Olive 106.3 FM Geo Bindas.

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है, जबरदस्त है।

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास 106.3 FM।

You are listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम
1: बिंदास
2: ओसम
3: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर
4: क्या बात है सर क्या बात ये बात है
2: ओसम

पुरंदर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग विद आरजे सुदेव, हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4411 1133।

आप सभी को एक सुपर डुपर गुड मॉर्निंग। तो जी भाई, यहाँ पे चार घंटे हम बैठेंगे एक साथ, करेंगे दिल खोल के बात, गुफ्तगू करेंगे, गाने सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे, ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करेंगे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताएंगे। तो कुर्सी की बेटी बांध लीजिए, ये है बिंदास मॉर्निंग्स ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM और मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव। और जैसे कि मैं हर बार याद दिलाता हूँ, आज फिर से याद दिलाऊंगा, वो ये है कि बाबूमोशाए मॉर्निंग सिर्फ गुड नाइट बिंदास होनी चाहिए। और मॉर्निंग को बिंदास बनाने के लिए बातें तो हम करेंगे ही करेंगे, गाने भी आपके लिए प्ले करेंगे, तो सिट टाइट। ये है रेडियो ऑलिव 106.3 FM, बिंदास मॉर्निंग में मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और अपने मैसेजेस को सेंड करना शुरू कर दीजिए 3311063 पर। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
4: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
5: In association with Naseem Healthcare. Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहाँ पे जो है बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आए हैं। मुझे ऋषिन का मैसेज आया है, नाजनी जी का मैसेज आया है, शशिकांत जी का मैसेज आया है। सब ने गुड मॉर्निंग मैसेजेस भेजे, अपने कोड्स भेजे हैं। बहुत बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। उसके साथ साथ मुझे एक और मैसेज आया है, इनके इसमें नाम लिखा नहीं है, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे बने हुए हैं और उसमें लिखा है कि हेलो सुदेव ब्रो, आई हैव बीन लिसनिंग टू यू फॉर सम टाइम। I always think of sending you some message, but नहीं कर पाता था। And today I am sending you my first message on Radio Olive 106.3 FM. Good morning, have a blast and be like this always. You fill our days with your morning dose of energy. Thank you so much for being so awesome. अरे यार, दिल खुश कर दिया आपने। Thank you जी, thank you so much. इतना प्यार दे दिया, मैं क्या करूँगा अब। But yeah, ऐसे ही messages मुझे भेजते रहिए 3311106.3 पर। अगर आपने अभी अभी ट्यून इन किया है तो इंतजार किस बात का है, जल्दी जल्दी अपने मैसेजेस भेजिए और बताइए मुझे क्या हाल है आपके, कैसा चल रहा है सब कुछ, आप ठीक हैं, बढ़िया हैं, आज के इंटेंशंस क्या क्या हैं बताइए, क्योंकि इरादे इंपॉर्टेंट है बाबू। और इसी बात को बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।
3: Awesome।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
3: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
4: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
5: In association with Naseem Healthcare. Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ओलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और आज ब्लैकबोर्ड स्टोरीज में मैं कुछ अलग करना चाहूंगा। यूजुअली मैं सवाल पूछता हूं, मगर आज मैं सवाल नहीं पूछूंगा। आज मैं आपको एक ट्रिविया बताना चाहूंगा टाइम जोन्स के बारे में, स्पेशली उस कंट्री के बारे में जिसके पास सबसे ज्यादा टाइम जोन्स हैं, और वो ऐसा क्यों है उसके बारे में भी हम जो है थोड़ा बातचीत जो है करेंगे। तो टाइम जोन ये होता है कि एक एरिया जहां पे यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड टाइम को कंसिडर किया जाता है लीगल, कमर्शियल एंड सोशल पर्पजेस के लिए, ठीक है। और हम सब जानते हैं कंट्री टू कंट्री जब हम ट्रैवल करते हैं तो टाइम जोन्स में फर्क भी आता है। और ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके पास सबसे ज्यादा टाइम जोन्स है, या फिर जिससे सबसे ज्यादा टाइम जोन्स गुजरते हैं? अगर हम ज्योग्राफिकली देखें इन टर्म्स ऑफ साइज, रशिया है, रशिया में 11 टाइम जोन्स गुजरते हैं, यूएस में 11 टाइम जोन्स गुजरते हैं, मगर इन दोनों को पछाड़ते हुए सबसे आगे है फ्रांस। फ्रांस के थ्रू सबसे ज्यादा टाइम जोन्स गुजरते हैं, मगर फ्रांस का साइज तो छोटा है यूएस और रशिया से कंपेयर करेंगे। तो ऐसा क्यों होता है, जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। यह रेडियो ओलिव 106.3 FM और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। फुटबॉल बाउंड्रीज नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता। इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया। अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया। नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है और यही है द हिवारी इनिशिएटिव जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। कल्चर ट्रैवल्स, फुटबॉल कनेक्ट्स एंड हिवारी इज ब्रिंगिंग कतर टू द वर्ल्ड।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
0: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
2: In association with Naseem Healthcare, Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.
0: Radio Olive.

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। ये है बिंदास मॉर्निंग्स, मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव। और यहाँ पे थोड़ी देर पहले हमने ब्लैक बोर्ड स्टोरीज में एक बात छेड़ी थी कि भाई टाइम जोन्स के बारे में बताया था मैंने, और ये भी बताया था कि रशिया से 11 टाइम जोन्स गुजरते हैं, उसके साथ साथ यूएस में भी हैं, मगर सबसे ज्यादा टाइम जोन्स जो हैं वो फ्रांस में है। मगर फ्रांस का जो साइज है वो रशिया और यूएस से कंपेयर करेंगे तो छोटा है, मगर कैसे, इसीलिए मैं आया हूँ, भाई आया है बता के जाएगा। तो फ्रांस से जो है 12 टाइम जोन्स गुजरते हैं, लेकिन अगर हम डेलाइट सेविंग टाइम के हिसाब से देखें तो 13 टाइम जोन्स गुजरते हैं, बट हम 12 रख लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। फ्रांस के थ्रू 12 टाइम जोन्स कैसे गुजरते हैं, तो फिजिकली फ्रांस के जो बाउंड्री जो हमने देखी है यूरोप में जो फ्रांस है उसमें से 12 टाइम जोन्स नहीं जाते, मगर फ्रांस के टेरिटरीज जो हैं वो ग्लोब में इधर उधर जो हैं स्कैटर्ड हैं, जिसके कारण ये टाइम जोन्स जो हैं फ्रांस के अकाउंट में ही गिना जाता है, इसलिए फ्रांस के जो हैं टोटल में 12 टाइम जोन्स हैं। और यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलू MasterCard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग विद आरजे सुदेव, हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4441 1133।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे चलिए जरा तापमान के बारे में बात कर लेते हैं। और अभी जो हम देख पा रहे हैं वो है 34 डिग्री सेल्सियस, और आज का जो हाईएस्ट टेम्परेचर जाएगा वो होगा 42 डिग्री सेल्सियस, लोएस्ट जाएगा 32 डिग्री सेल्सियस, और आज हवाएं बहेंगी 26 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। और मेरे मन में यही सवाल पनप रहा है कि क्या ये हवा थोड़ी ठंडक दे दे तो मजा आ जाएगा, मगर ठंडक मिलेगी नहीं, इसलिए अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो अपना ख्याल रखिएगा, सनस्क्रीन लगाना मत भूलिए। मैं हर दिन भूल जाता हूँ, मैं तो स्टूडियो के अंदर रहता हूँ इसलिए ठीक है, मगर आप लोग अगर बाहर जा रहे हैं तो सनस्क्रीन लगाना मत भूलिएगा। और यही बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरेडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू.
1: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
2: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
1: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
2: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
1: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
3: Hi Radio Olive 106.3 listener. This is Shah Rukh Khan.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Akshay Kumar.
6: Hi, this is Anushka Sharma.
7: And I'm Ashwin Vasi.
8: This is Ranveer Singh. Stay tuned.
0: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
1: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
2: In association with Naseem Healthcare, Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहाँ पे हमारे पास थोड़े फोटोज आए हैं। मुझे अहमद भाई ने फोटो भेजा है, अपने गाड़ी के बाहर का एक फोटो मुझे भेजा है, और काफी बढ़िया नजारा है, और देख के ही मुझे गर्मी लग रही है थोड़ी थोड़ी। उसके साथ साथ मुझे असलम भाई का मैसेज आया है, उन्होंने बोला गुड मॉर्निंग सुदेव, ये रहा आज का फोटो करके। उन्होंने मुझे एक पार्क की साइड का फोटो भेजा है, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। दीपक सर का फोटो आया है, उन्होंने भी एक बहुत ही प्यारा सा फोटो जो है, मुझे लगता है इनके ऑफिस के बाहर का व्यू है, काफी प्यारा व्यू भाई, मतलब देख के मजा आ गया। उसके साथ साथ मुझे अनिल जी का मैसेज आया है, उन्होंने बोला गुड मॉर्निंग सुदेव, और ये लो आज का फोटो करके। उन्होंने भी एक फोटो मुझे भेजा है, और मैं बहुत दिनों से यार इदरीस भाई का फोटो जो है मिस कर रहा हूँ, सच बताऊँ तो सामी भाई की फोटोग्राफी को भी मैं मिस कर रहा हूँ। अगर आप सुन रहे हैं सामी भाई, तो जल्दी जल्दी फोटो भेज दीजिए मुझे। और यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टरकार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। टीएनसी अप्लाई।
2: जैकमैन की पावर पैक्ड रेंज, हेवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ।
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
5: In association with Naseem Healthcare, Naseem Surgical and Medical Center, Searing Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। ये है बिंदास मॉर्निंग्स, मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव। और यहाँ पे जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। देखिए, हम सब जानते हैं कि हेल्थ के लिए बहुत सारी चीजें हमें करनी पड़ती है, मगर कुछ कुछ लोग समझते हैं कि हेल्थ जो है वो जेनेटिक्स पे बहुत डिपेंड करता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि आपकी सोच में थोड़ी सी गलती है। जेनेटिक्स एक हिस्सा है, मगर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल भी है। अगर लाइफस्टाइल में हम अच्छे चेंजेस लेकर आते हैं, पॉजिटिव चेंजेस लेकर आते हैं, तो हमारे हेल्थ पे बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। हम लॉन्जिटिविटी अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं, साथ ही साथ अपना ओवरऑल जो डेली फंक्शनल हेल्थ है उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आजकल की सेडेंटरी लाइफस्टाइल में कुछ अच्छे चॉइसेस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली एक्सरसाइज या फिर हफ्ते में 5 बार एक्सरसाइज करना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा कार्डियोवैस्कुलर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसका बैलेंस, इसका मिक्स जो है काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ क्लीन डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या खाने में कंज्यूम कर रहे हैं वही नहीं, उसके साथ साथ डिजिटली हम क्या क्या कंज्यूम कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मेंटल वेलबींग के लिए। तो ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस अगर हम लेकर आएंगे तो हम अपने जेनेटिक्स को भी ओवरपावर कर सकते हैं एक हद तक, और एक अच्छी जिंदगी, एक हेल्थी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। तो लाइफ में हमारे हेल्थ के लिए सिर्फ जेनेटिक्स ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हमारे चॉइसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और यही बात याद दिलाते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: सुरों का कमाल,
2: घर से निकलते
1: नाम है अमाल। हैप्पी बर्थडे टू द हिट मशीन अमाल मालिक। सुनिए दिन भर अमाल मलिक के हिट गाने।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas. Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
2: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
0: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं, वॉरियर कहलाते हैं. यहां हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है. यहां हर चोट एक मेडल है. हारना मना है और डरना गुनाह है. यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है. और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है. बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन. FIFA की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ओलिव
3: इन एसोसिएशन विद.
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स.
4: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर. दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस.
5: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर.
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में.
5: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस. बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए.
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026. दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
6: Dr. On Air. Dr. On Air. Brought to you by Naseem Healthcare.
7: Do you know the number one reason why adults lose their teeth is not because of cavities? It is because of gum disease, also called as periodontitis. Hello, my name is Dr. Mohammed Basil. I'm a periodontist from Naseem Medical Center. Now, the starchy and the sugary food debris that is left behind in your mouth after each of our meals interacts with certain bacteria and forms a soft coating on the teeth called as plaque, which can be removed by proper toothbrushing. But if left behind, it hardens to form something called as calculus or tartar, which can only be removed by professional cleaning. When untreated, it irritates the gum tissues, leading to inflammation of the gums. This inflammation then spreads to the bone supporting your teeth, causing bone loss and ultimately loss of your teeth. So make sure you visit your dentist before you go from a beautiful smile to a toothless smile.
6: Dr. On Air. Dr. On Air. Brought to you by Naseem Healthcare.
8: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
9: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
10: In association with Naseem Healthcare, Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411133.
11: Hi, this is Deepika Padukone.
12: Deepika Padukone.
11: Radio Olive 106.3.
13: I'm in number one. Radio Olive.
0: Olive Sonor Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहाँ पे जो है मेरे पास एक मैसेज आया है। मुझे मैसेज भेजा है अंसारी भाई ने। उन्होंने मैसेज करके बोला है कि सुदेव, थोड़ी देर पहले जो आपने हेल्थ की बात की है, लाइफस्टाइल चेंजेस की बात की है, बहुत ही अच्छी लगी मुझे। एक्चुअली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम प्राउड टू से दैट फॉर द लास्ट 20 ईयर्स आई हैव बीन फॉलोइंग एन एक्टिव लाइफस्टाइल एंड इट हैज़ हेल्प मी अलॉट करके। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपने मेरी बात सुनकर जो अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर किया। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि एक्टिव लाइफस्टाइल के हिसाब से जैसे जैसे हमारी उम्र भी बढ़ती है, हमें अपने वर्कआउट को भी मॉडिफाई करना होता है, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात जो है बिल्कुल सही कही है आपने अंसारी भाई, मैं बिल्कुल शत प्रतिशत आपसे सहमत हूँ। और जैसे कि 22 की उम्र में जो एक्सरसाइज हम करते हैं या फिर कर सकते हैं, वो हम 52 में नहीं कर सकते, क्योंकि बॉडी को रिकवरी के लिए और टाइम चाहिए और एनर्जी में भी बहुत डिफरेंट रहता है। तो एज के हिसाब से अपने एक्सरसाइज रूटीन को भी हमें मॉडिफाई करना होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। थैंक यू सो मच, और ये बात बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी बढ़िया और बिंदास दिन जो है एक्सपीरियंस करने को मिले। और यही बताते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: are listening to Radio Olive 106.3 FM. दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलू MasterCard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
2: Football boundaries नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता। इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया। अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया। नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है और यही है द हिवारी इनिशिएटिव जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। कल्चर ट्रैवल्स, फुटबॉल कनेक्ट्स एंड हिवारी इज ब्रिंगिंग कतर टू द वर्ल्ड।
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग विद आरजे सुदेव, हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओनली 106.3 FM जियो बिंदास
1: मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4441 1133।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है मैंने नोटिस की है, कैसे हम मेंटल क्लटर को क्लियर करने के लिए या फिर मेंटल क्लटर से छोटा छुटकारा पाने के लिए हम अपने फ़ोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर फ़ोन में भी थोड़े चेंजेस लेकर आ सकते हैं। कैसे? हम सब ने सुना है कि अगर हमारा रूम टाइडी है, ऑर्गेनाइज्ड है, नीट है, तो मेंटल क्लटर जो है, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो कम हो जाएगा। सिमिलरली फ़ोन हम डेली बेसिस में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, अगर उसमें अनवांटेड चीज़ें, चाहे वो फ़ोटोज़ हो या फिर ऐप हो, गेम हो, कुछ भी अगर अननेसेसरी पड़ा है, 6 महीने से ज़्यादा पड़ा है जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो एक बर्डन है। आप उसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ताकि फ़ोन में मेमोरी फ्री हो जाए और माइंड भी थोड़ा फ्री हो जाए, क्योंकि जहाँ जहाँ हमें क्लटर दिखेगा वहाँ वहाँ हम बहुत ही माइन्यूट तरीके से डिस्टर्ब भी फील करेंगे। और यही बात याद दिलाते हुए हम भी ज़रा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
1: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
2: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
1: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
2: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
1: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Hi, Radio Olive. 106.3 listeners. This is Shahrukh Khan.
5: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
6: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
0: In association with Naseem Healthcare, Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411133.

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। भाई फीफा वर्ल्ड कप 2026 जोरों शोरों से चल रहा है और यहां पे काफी इंटरेस्टिंग ट्रिविया मैं आपको बताना चाहूंगा। फीफा की हिस्ट्री में मैच ऑफ द सेंचुरी किसे बोला गया है? सबसे क्रेजीएस्ट फाइनल्स की अगर हम बात करें तो 2022 का जो फाइनल था वो काफी बढ़िया था, काफी अमेजिंग था, नर्व क्रैकिंग था। मगर उससे पहले 1970 में हुए, मेक्सिको में हुए वर्ल्ड कप में जो सेमीफाइनल हुआ था इटली और वेस्ट जर्मनी के बीच में, वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और क्रेजी था। मैं बताता हूँ क्यों। 1970 में स्टेडियो अस्टेका में जो है सेमीफाइनल हुआ इटली और वेस्ट जर्मनी के बीच में। थ्रू आउट द गेम जो है स्कोर जो है 0-0 रहा, मगर लेटर एंड में जो है 1-0 के एक लीड से इटली ने एक कंफर्टेबल पोजीशन बना ली थी। मगर 92nd मिनट में इंजरी टाइम में जर्मनी ने इक्वलाइज किया और गेम में वापस आए और गेम को एक्स्ट्रा टाइम में पुश कर दिया। अब एक्स्ट्रा टाइम में सोचिए 21 मिनट में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच गोल आए थे, पांच गोल। और इतना इंटरेस्टिंग ये गेम बन गया था, जब जर्मनी इक्वलाइज करती है तो इटली लीड ले लेती है, और जब इटली लीड ले लेती है तो जर्मनी फिर से इक्वलाइज कर देती है। ऐसे आगे पीछे होते होते फाइनली 4-3 के स्कोर में इटली ने जो है मैच को अपने हाथ लिया और वो फाइनल की ओर चल दिए। मगर इतने इंटरेस्टिंग मुकाबले को फीफा ऐसे ही छोड़ नहीं सकता था, इसलिए स्टेडियो अस्टिका के बाहर जो है एक ब्रॉन्ज प्लाक लगा रखा है जिसमें बोला है कि यहाँ पे हुआ था गेम ऑफ द सेंचुरी बिटवीन इटली एंड वेस्ट जर्मनी ड्यूरिंग 1970s वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स। और इसमें एक और खास बात है, वेस्ट जर्मनी के जो कैप्टन थे फ्रांस बेकेनबॉ, उनको एक फाउल के कारण जो है शोल्डर डिसलोकेशन झेलना पड़ा और वो बाहर नहीं गए क्योंकि जर्मनी जो है अपने ऑलरेडी दो सब्स्टिट्यूशंस ले चुका था। तो यहाँ पे कंधे में एक पट्टा बांध के हाथ को अपने शरीर से लगा के वो पूरे मैच को खेले। 70th मिनट में उन्हें इंजरी हुई थी, उसके बाद उन्होंने गेम कंप्लीट किया, उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम भी खेला और थ्रू आउट दिस ड्यूरेशन वो इंजर्ड रहे, मगर उन्होंने गेम के स्पिरिट के कारण अपनी जगह नहीं छोड़ी क्योंकि वो दिल से खेल रहे थे। और जब इंसान दिल से खेलता है तो वो सारी मुश्किलों को पार करने की कोशिश कर लेता है। और यही बात याद दिलाते हुए हम भी जरा आगे बढ़ना चाहेंगे इस गेम के बारे में, ऐसी ऐसी कहानियां आपके साथ बताना चाहेंगे क्योंकि ये खेल है ब्लॉकबस्टर।
1: ये खेल है ब्लॉकबस्टर। In association with... Download the City Exchange mobile app now to send money quickly at the best exchange rates.
2: Also, Palm Swiss Gold Bars are now available at the best price at City Exchange.
1: Your trusted remittance partner. Awesome.
3: Radio Olive par aane wala gaana, cool song of the hour. Cool song of the
4: hour. Kya baat hai sir? Kya baat hai?

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
3: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
4: In association with Naseem Healthcare. Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे चलिए बात करते हैं आज के फिक्स्चर्स के बारे में जो होने वाले हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 में।
1: ये खेल है ब्लॉकबस्टर।
2: In association with
3: download the City Exchange mobile app now to send money quickly at the best exchange rates.
4: Also, Palm Swiss Gold Bars are now available at the best price at City Exchange,
3: your trusted remittance partner.
0: तो आज जो मैच खेलने जाने वाला है वो है फ्रांस और सेनेगल के बीच में, और 10 बजे रात को जो है ये मैच होने वाला है। देखते हैं इनमें से कौन जीतता है। देखिए, मेरा बेट जो है वो है फ्रांस के साथ, क्योंकि काफ़ी बढ़िया स्क्वाड है फ्रांस की, और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो एक बहुत ही पम्प्ड अप जो एक टीम के साथ जो है फ्रांस जो है टूर्नामेंट में पहुंची है। लेकिन सेनेगल को हम हल्के में नहीं ले सकते। देखिए, मेरा मानना है कि किसी भी टूर्नामेंट में हम किसी भी टीम को हल्के में नहीं ले सकते। बड़े बड़े टीम्स को छोटे छोटे टीम्स ने काफ़ी आसानी से पछाड़ा है, और तारीख जो है इस बात का गवाह है। और यही बात बताते हुए मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि आपको क्या लगता है फ्रांस और सेनेगल में कौन जीतेगा, आप बताइए मुझे 3311063 पर मैसेज करके। और यही बात बोलते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
3: सुरों का कमाल,
5: घर से निकलते
3: नाम है अमाल। हैप्पी बर्थडे टू द हिट मशीन अमाल मालिक। सुनिए दिन भर अमाल मलिक के हिट गाने।

0: Olive, 106.3 FM, Gio Bindas.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
0: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस.
2: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर.
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में.
2: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस. बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए.
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026. दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
5: In association with Naseem Healthcare, Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहाँ पे अल नबी के सेकेंड मैच के लिए हम सब जो है काफी बढ़िया तरीके से तैयार हैं। कतर का नेक्स्ट मैच होने वाला है थर्सडे जून 18 को, और वो भी कनाडा के खिलाफ होने वाला है। मैच होगा वैंकूवर कनाडा में, और देखिए दोनों टीम जो है काफ़ी अच्छी टीम है, और उसके साथ साथ मैं बता दूं तो कतर जो है एक अच्छे पम्प्ड अप तरीके से जो है इस मैच को अप्रोच करेगा, क्योंकि पिछले मैच में जो है उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, अपना पहला पॉइंट जो है उन्होंने स्कोर किया है। ऑब्वियसली इस टीम में उसे कॉन्फिडेंस के साथ, उसे एक जोश के साथ जो है कतर उतरेगा। उसके साथ साथ देखने की सबसे बढ़िया बात है जो कतरी फैंस वहाँ पर पहुँचने वाले हैं, अल्लाह नबी के जो फैंस हैं जो वहाँ पे कनाडा में सपोर्ट करने के लिए पहुँचेंगे, वो एक बहुत ही बढ़िया स्पेक्टिकल जो है वर्ल्ड के लिए बना रहे हैं। वो ये है कि वो कतर के कल्चर को, कतर के ट्रेडिशन को प्रमोट कर रहे हैं, ट्रेडिशनल ड्रेस में वो मैच देखने जाते हैं, और इससे हम और ये जो सपोर्ट है ये हिवारी करके एक इनिशिएटिव के थ्रू चल रहा है, जिसके माध्यम से पूरी दुनिया को हम ये बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि कतर दिन ब दिन जो है हर फील्ड में आगे बढ़ रहा है, मगर अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर का हाथ थामे हुए। और यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टरकार्ड प्लैटिनम शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। टीएनसी अप्लाई। इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहां हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहां हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुना है। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। फीफा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ओलिव
1: इन एसोसिएशन विद।
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
2: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर। शैकमैन की पावर पैक्ड रेंज, हैवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कारमिल के साथ। विजिट कारमिल ग्रुप नाउ।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा, कैसे हम इस धुत गर्मी के टाइम पे अपनी एनर्जी बचा सके या फिर अपने आप को एनर्जाइज रखें। सबसे इंपॉर्टेंट बात है हाइड्रेशन, मगर सिर्फ पानी पीने से ही नहीं होगा, वी हैव टू हाइड्रेट बियॉन्ड प्लेन वाटर। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशमेंट। देखिए, जब भी हमें पसीना आते हैं तो उससे काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो हैं हमारे बॉडी से निकल जाते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम। इससे हमें फिजिकल और मेंटल स्लगिशनेस जो है ये फील होता है, तो हमारे फ्लूइड्स को बूस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैग्नीशियम रिच इलेक्ट्रोलाइट ब्लेंड या फिर कोकोनट वाटर जो है काफ़ी अच्छा एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है। उसके साथ साथ स्मार्ट चॉइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्मी के टाइम पे ज़्यादा कॉफ़ी और उसके साथ साथ ऐसे कैफीन प्रोडक्ट्स आप ना यूज़ करें, क्योंकि इनमें डायूरेटिक्स होता है जो डिहाइड्रेशन को एम्प्लीफाई कर देता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमारे बॉडी को जो फ्यूल हमें देना है वो ऐसा होना चाहिए जो हमें लाइट रखे, तो लाइट मील्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कूलिंग फूड।

0: फूड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पपाया, टोमेटो, स्ट्रॉबेरी, और एनर्जी बूस्टिंग फूड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ब्रेकफास्ट स्मूदी या फिर ग्रीक योगर्ट विद मैंगो, ये सब बहुत ही एनर्जाइज कर देने वाले कॉम्बिनेशंस हैं। हम अपने एक्सरसाइज रूटीन को भी एडजस्ट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा अगर हम इंडोर में एक्टिव रहें और बढ़िया रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद गानों के उस पार जब हम आएंगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके लिए लेकर आएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: Say what?

0: शॉर्ट ब्रेक कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
2: शैकमैन की पावर पैक्ड रेंज, हेवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ।
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3।
5: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
6: रेडियो ओलिव नंबर वन।
7: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
8: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
9: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4441 1133।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अपने आप को एनर्जाइज रखने के लिए क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं इस गर्मी के मौसम में। सिमिलरली इस गर्मी के मौसम में काफी अच्छा स्मेल करने के लिए भी और आपसे एक अच्छी खुशबू लेकर आने के लिए भी आप क्या क्या कर सकते हैं। ऑब्वियसली परफ्यूम लगाएंगे, मगर कौन से नोट के परफ्यूम लगाएंगे वो मैं बताना चाहूंगा आपको। कभी कभी क्या होता है, मौसम के हिसाब से हमें अपने परफ्यूम्स को चेंज करना रहता है। अगर हम करेंगे तो अच्छा रहता है। कुछ कुछ परफ्यूम्स जो होते हैं जो ऑल ईयर लॉन्ग चलते हैं, मगर कुछ कुछ स्पेशली समर के लिए होते हैं। तो ऐसे कौन से नोट्स हैं जो समर फ्रेश है, समर फ्रेंडली हैं? सबसे पहले आता है सिट्रस नोट्स, जो अनडिस्प्यूटेड चैंपियंस है समर के। काफ़ी एक इमीडिएट बर्स्ट ऑफ फ्रेशनेस जो है इनसे हमें मिलती है, एक अच्छी वाइब जो है इनसे हमें मिलती है। फिर आता है एक्वाटिक एंड ओशनिक नोट्स, जिसमें हमें बीच का या फिर एक सॉल्टी सी एयर का एक फीलिंग आती है, एक वेकेशन काइंड ऑफ ए फीलिंग जो है इनसे मिलती है हमें, और काफ़ी कूलिंग सेंसेशन भी जो है इनसे मिलती है। लाइट फ्लोरल्स भी काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। ग्रीन हर्बल नोट्स भी जो हैं बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं। ट्रॉपिकल नोट्स, सोलर नोट्स भी जो है बहुत लोगों को पसंद है। मेरा अगर फेवरेट कोई पूछे तो मैं सिट्रस नोट्स और एक्वेटिक एंड ओशनिक नोट्स जो है प्रेफर करता हूँ, मुझे ज़्यादा पसंद है समर के लिए। और ये चीज़ चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जो आप परफ्यूम लेने के लिए जाएं तो आप बोल सकते हैं, यार सिट्रस नोट वाला कोई परफ्यूम दिखा दो समर के लिए, तो अच्छे अच्छे परफ्यूम्स आपको मिल सकते हैं। और यही बात बोलते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas. दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु MasterCard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Malabar Gold and Diamonds Bindaas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
4: In association with Naseem Healthcare. Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये है कि रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम पेज को अगर आपने फॉलो नहीं किया तो जानिए क्या किया, सीधा जाइए आप रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम पेज में, विच इज radioolive.qa। फॉलो नहीं किया तो फॉलो बटन एक बार दबाइए, दो बार नहीं। उसके साथ साथ आप हमारे पोस्ट चेकआउट कर सकते हैं, कॉन्टेंट चेकआउट कर सकते हैं, अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं, और आप अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स जो कहीं पे भी है, कतर में है, बाहर है, कहीं पे भी है, उनको हमारे ऐप के बारे में बता सकते हैं, ताकि वो भी जहां पर भी वो है वहां बैठे बैठे हमारे इस जर्नी का हिस्सा बन सके। तो रेडियो ऑलिव का ऐप जो है वो ऐप स्टोर प्ले स्टोर दोनों में अवेलेबल है, तो जानिए इंतजार किस बात का है, ये खबर फैलाइए, स्प्रेड द वर्ड। ये बोलते हुए जरा हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: माँ मुझे छोटे एड ब्रेक्स दिखाई दे रहे हैं माँ।
1: ऑल एफ शॉर्ट ब्रेक
0: जादू।
2: दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
3: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
2: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
3: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
2: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलू मास्टरकार्ड प्लैटिनम शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग TNC अप्लाई।
4: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
5: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
6: In association with Naseem Healthcare, Naseem Surgical and Medical Centers, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: तो भाई धीरे धीरे टाटा बबाई करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि 10 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में यहाँ पे कशिश पहुंच जाएगी आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो खुली बाहों से कशिश का स्वागत कीजिएगा, जितना प्यार मुझे दिया है उतना और उससे ज्यादा प्यार कशिश को दीजिएगा। और जाते जाते जाते हम आपको यही याद दिलाना चाहते हैं कि अपना ख्याल रखिए, अपने खास लोगों का ख्याल रखिए और हमें जरा दुआओं में याद रखिए। फिर मिलेंगे कल सुबह 6 बजे, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, बहुत बढ़िया तरीके से इस डे को स्पेंड कीजिए। और हमेशा याद रखिए, कोई भी दिक्कत हो लाइफ में, कोई भी मुश्किलात हो, हमेशा दिल से कहते रहिए जियो बिंदास।
1: सुरों का कमाल,
2: घर से निकलते
1: नाम है अमाल। हैप्पी बर्थडे टू द हिट मशीन अमाल मालिक। सुनिए दिन भर अमाल मलिक के हिट गाने।

0: मेरे छोटे एड्रिक्स आएंगे?
1: आएंगे नहीं, आ गए।
2: ऑलिव शॉर्ट ब्रेक।
3: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। Experience more with ओरिडू।
4: This hour is brought to you by
5: Homestar Us. We complete your home.

क्या बस आप मैं और हमारा ये शो अलका याग्निक और अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में ये ट्रैक आपने एंजॉय किया। वेलकम 106.3 रेडियो ऑल पर, मैं हूँ आपकी कशिश और शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई। हाय हाय यार देखो, कभी कभी मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड होती हूँ आप लोगों से बातचीत करने के लिए कि मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ। मतलब बस मुझे बात करनी है लेकिन मेरे पास टॉपिक नहीं है। सो आज का टॉपिक डिसाइड आप लोग करेंगे। हाँ मतलब भले ही आप लोग ये कहेंगे कि कशिश आते ही हमें काम दे दिया, तो इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हो ना। देखो 3311063 इस पर आगे आप मुझे बताएंगे कि आज हम किस बारे में बातचीत करने वाले हैं। खैर कुछ चीज़ें मैं भी आपके लिए लेकर आई हूँ, जैसे फैशन में क्या कुछ नया चल रहा है या फिर टेक्नोलॉजी में क्या कुछ नया चल रहा है, ये सब बताऊंगी लेकिन थोड़ी सी देर में। अभी अभी तो आई हूँ, अभी अभी तो हमने शुरुआत की है। अमेजिंग वाले गाने भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सबसे पहले मेरा फेवरेट गाना सुनेंगे क्योंकि शो मेरा है। अगर आपको भी कोई गाना सुनना है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि मैं वो गाना चला दूं। पहले जो है सबसे पहले ये वाला गाना सुन लेते हैं। आदित्य रिखारी की आवाज में कोक स्टूडियो भारत का ये गाना है, गाने का नाम ए अजनबी है। सो इस गाने को एंजॉय करो और लौट के जल्दी से वापस आ जाओ। आने के बाद जो है मौसम की जरा बातचीत कर लेंगे। फिलहाल एंजॉय करो और कहते रहो आपकी कशिश के साथ। चियो बिंदास।

0: Time check. Time check. Brought to you by Nanatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhol.
1: स्टूडियो क्लॉक में इस वक्त हो रहे हैं 10:12।
2: शैकमैन की पावर पैक्ड रेंज, हेवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कारमिल के साथ। विजिट कारमिल ग्रुप नाउ।
3: मैं हूं अनिल कपूर, रेडियो ओलिव, यू आर विद अस।
4: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर 1 एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: देखिए ना, आपसे मेरा मन भर रहा है ना, मेरे से आपका मन भर रहा है, और ना ही अमेजिंग वाले गानों से हमारा मन भर रहा है। बातें बहुत सारी करनी है, लेकिन शुरू करते हैं ओए होए से। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश, जो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड इस वक्त अगर मैं टाइम की बात करूँ तो स्टूडियो क्लॉक में 10:17 हो रहे हैं, घड़ी जो है 10:18 की ओर भाग रही है, एंड हम भाग रहे हैं अमेजिंग कंटेंट की तरफ। लेकिन कंटेंट अगर आपको बाहर डे लाइट में शूट करना हो या बनाना हो, तो फिर आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ जाता है, क्योंकि इस वक्त का टेम्परेचर जो है वो 41°C हो रहा है। बिल्कुल इतने में तो मैं अपना खाना गर्म करती हूँ। लेकिन सबसे बेस्ट बात यह है कि जैसे ही आप घर के अंदर आओ, आप ऑफिस के अंदर आओ, आप कैब के अंदर बैठो, या आप बस के अंदर या मेट्रो के अंदर जाओ, आपको पता ही नहीं चलता है कितना टेम्परेचर हो रहा है बाहर। सबसे बेस्ट बात मुझे कतर की यही लगती है, वरना भोपाल में तो ऐसा होता था कि अगर टेम्परेचर जो है वो 30 या 32 के आसपास भी गया ना, तो भी मैं ऐसे पिघलने लग जाती थी। आज का टेम्परेचर जैसे मैंने आपको बताया, अभी फिलहाल 40°C हो रहा है, आज का मैक्सिमम टेम्परेचर 41°C तक जाएगा, एंड आज का मिनिमम टेम्परेचर 32°C रहेगा, जो कि शाम होते होते तक हमें फील होने लग जाएगा। लेकिन लेकिन लेकिन मुझे पता है इस हीट को बीच करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है कूल सॉन्ग ऑफ द आवर सुनना। सो कूल सॉन्ग ऑफ द आवर जो है मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ। सो हम थोड़ी सी देर में कूल सॉन्ग ऑफ द आवर सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैसेजेस आना जो है मेरे पास शुरू हो गए हैं। मैंने बस आपसे यही पूछा था कि आप बताइए कि आज हमारे शो पे किस बारे में बात की जाए। 3311063 पर जल्दी से आके मुझे बता दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी मैसेजेस आने लग गए हैं, आपका टॉपिक कहीं मिस ना हो जाए।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है, कूल सॉन्ग।
0: सो ये गाना एंजॉय करके आइए, मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर में। मैं हूँ आपकी कशिश, कहते रहो मेरे साथ जियो बिंदास।

0: मेरी दुनिया तो देखो आप ही लोगों, आपसे ही मेरी सुबह होती है, आपसे ही मेरी शाम होती है, और आपके बिना मैं कुछ भी नहीं, इसीलिए तो आपकी कशिश हूँ मैं। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड लाइफ देखो अपनों से ही तो मस्त बनती है, बस इसीलिए आज मेरे अपनों से यानी आप सबसे मैंने यही पूछा था कि आज शो पर किस बारे में बात की जाए, क्योंकि रोज़ तो अपने मन से कंटेंट में लेकर आती हूँ, आपको बताती हूँ, आपके साथ थोड़ी सी मस्ती मज़ा करती हूँ एंड फिर चली जाती हूँ। तो मैंने पूछा था कि बताओ यार आपको क्या लगता है कि आज किस बारे में बात करनी चाहिए। सो बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया है एंड कुछ लोगों ने कहा स्पोर्ट्स पे बात करो, लेकिन मेरा फेवरेट टॉपिक जो है वो मोहम्मद यूसुफ खान जी ने कहा है कि यार बॉलीवुड पे बात की जाए। सो बस बॉलीवुड की एक खबर मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ। आपने गदर मूवी तो देखी होगी है ना, जिसमें हैंडपंप उखाड़ दिया था सनी देओल जी ने। सो उस मूवी को कल 25 साल पूरे हो गए, 2001 में वो मूवी रिलीज हुई थी एंड मुझे रियलाइजेशन हो रहा है कि ये मूवी मुझसे ज़्यादा पुरानी है। मेरा आपको जो है ओल्ड फील कराने का कोई भी मतलब नहीं था, लेकिन बस मैं खुद को यंग फील कराती हूँ ऐसे कह कह के, क्योंकि मुझे ये रियलाइज नहीं करना है कि कशिश अब आप अडल्ट हो गए हैं, अब आपको अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए, आपको अपने सारे काम खुद करने चाहिए। नहीं, मुझसे नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं खुद को जो है छोटा एज में जो है वो फील कराती रहती हूँ। खैर ये जो मूवी है जिसके 25 साल हो गए, गदर एक प्रेम कथा, एंड 2001 में ये मूवी रिलीज़ हुई थी एंड अमीषा पटेल एंड सनी देओल जो है इस मूवी के 25 साल पूरे होने पर जो है वापस एक साथ दिखे एंड उसमें जो है पेपराजी ने पूछ लिया उनसे, मीडिया ने ये क्वेश्चन पूछा कि अब जो है एआई से सब यंग दिखने की कोशिश करते हैं, सो क्या हमें एआई के रूप में आप दोनों वापस यंग अवतार में देखने को मिलेंगे। एंड अमीषा का बहुत स्ट्रेट एक जवाब था कि सनी कभी ओल्ड नहीं दिख सकते, ये तो हमेशा ही यंग दिखते हैं। ओ माय गॉड। लेकिन अमीषा पटेल ने जो एक्टिंग करी थी इस मूवी में यार मैं नहीं भूल सकती, वो जो आहें भरी हैं, वो जो सांसें ली हैं, लंबी लंबी सांसें, मतलब ऐसे जब मेरी नाक बंद हो जाती है ना मैं तब सांसें लेती हूँ जैसे अभी मेरी नाक बंद हुई है। फिलहाल आज हैप्पी वाला बर्थडे है अमाल मलिक जी का, सो इनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए जरा इन्हीं का एक गाना सुनते हैं, बाकी लौट कर मैं आती हूँ। आप मुझे तब तक बताइए कि और किस बारे में हमें बात करनी चाहिए। 3311063 इज द नंबर।
1: सुरों का कमाल नाम है अमाल। हैप्पी बर्थडे टू द हिट मशीन अमाल मलिक। सुनिए दिन भर अमाल मलिक के हिट गाने।
0: शेफ मूवी का ये ट्रैक आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, गाने का नाम तेरे मेरे, इसे एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम। शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।

लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ऑलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।

0: ये गाना ना किसी मेडिटेशन जैसा फील होता है. I don't know, आपके लिए वो ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो आपको बहुत रिलैक्स और काम फील कराती है. लेकिन मेरे लिए तो अगर कोई सबसे मेजर एक्टिविटी है जिससे मुझे पीस मिलता है, जिससे मुझे सुकून मिलता है, तो वो है म्यूजिक सुनना. वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर. मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ. एंड जहाँ पर आप रेडियो ऑलिव पर इतने अमेजिंग अमेजिंग गाने, अलग अलग टाइप के गाने, अलग अलग एरा के गाने इन्जॉय करते हैं, वहीं पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि म्यूज़िक सुनने से ना आपका स्ट्रेस काफ़ी कम होता है. और ये कोई पहली बार नहीं है जब हम इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन एक रिसर्च हाल ही में सामने आई है जिसके मुताबिक रोज़ सिर्फ 20 मिनट्स म्यूज़िक सुनने से आपके दिमाग पे जो है एक ऐसा असर पड़ता है जो जिम जाने से भी नहीं पड़ता है. यानी आपकी मेमोरी जो है वो स्ट्रांग हो जाती है, आपके मसल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं मजबूत होने लग जाते हैं अगर आप बस 20 मिनट अपने फेवरेट गाने सुनते हैं तो. स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, कॉर्टिसोल जो है वो कम हो जाता है. कॉर्टिसोल यानी एक स्ट्रेस हार्मोन होता है. सो जैसे कल मैंने आपको बताया था कि पानी देखने से यानी किसी वाटर बॉडी के पास जाकर बैठने से आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से म्यूजिक सुनने से भी आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है. अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एक सेगमेंट सिर्फ स्ट्रेस कम कैसे किया जाए इस पर ही शुरू कर देना चाहिए क्योंकि रोज कोई ना कोई एक ऐसा तरीका मैं बताती हूँ जिससे आपका स्ट्रेस कम होता है. सो चलिए आज से हम एक ऐसी चीज पे बात करेंगे जिससे स्ट्रेस कम होता है. आज मैंने म्यूजिक की बात करी है. सो 20 मिनट अपना फेवरेट म्यूजिक सुनना जरूरी है, इसीलिए हम आपको बैक टू बैक अमेजिंग अमेजिंग गाने जो है वो सुनाते हैं. जैसे अभी मैं ले आई हूँ आपके लिए ऑलिव फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर. सो ये अमेजिंग सा नया नवीला गाना आपके लिए आ रहा है, इसे एंजॉय कीजिए और स्टे ट्यून्ड रहिए.
1: रेडियो ऑलिव पर song of the hour
2: ye gana
0: ye gana enjoy karke aaiye aapka stress to main dekho kaise kam karti hu main hu aapki kashish mulaqat ho gaya bollywood updates ke sath stay tuned rahiye aur kehte rahiye jio bindas

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: रेडियो ओलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।
1: स्टूडियो क्लॉक में इस वक्त हो रहे हैं 11:09।
2: दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
3: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
2: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
3: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
2: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
4: Hi Radio Olive 106.3 listeners. This is Ranveer Singh. Radio. Stay tuned.
5: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian Radio Network.

0: एक और गाना मिल गया मुझे मेरी लाइफ के बैकग्राउंड में चलाने के लिए. वेलकम बैक 106.3 रेडियो पर मैं हूँ आपकी कशिश. शो आपके लिए लाइफ मस्त लेकर आ गई हूँ. एंड गाइज हवा हवाई तो मैं हूँ क्योंकि मैं पूरा टाइम हवा में रहती हूँ. मेरे कॉन्फिडेंस का कोई तोड़ नहीं है, मेरे कॉन्फिडेंस का कोई जवाब नहीं है. मैं इतनी ओवर कॉन्फिडेंट टाइप की इंसान हूँ ना कि गलत चीज़ भी इतनी कॉन्फिडेंस से बोलूँगी कि हाँ हाँ चेक कर लो, हाँ हाँ देख लो. और इस चक्कर में बहुत टाइम और बहुत पैसे वेस्ट हो जाते हैं यार. सो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ एक चीज़ कि होता क्या है कि अक्सर अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है तो आप साइड वाली जो सीट है उस पर बैठते हो एंड आपको जिम्मेदारी दी जाती है कि आप मैप देखिए और रास्ता बताइए. एंड मैं वो इंसान हूँ जिसे ये जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं देनी चाहिए. मेरे घर वालों ने खुद मुझे गाड़ी चलाना इसीलिए बोला कि यार तुम गाड़ी चलाना सीख लो, तुम गाड़ी चलाना शुरू कर दो, क्योंकि एक बार तुम गाड़ी चलाना शुरू करोगी तो हम बगल में बैठ के तुमको रास्ता बता पाएंगे लेकिन तुम्हें मैप देखने नहीं देंगे. क्योंकि मैप देखने में मैं जो है मैप की गलती बता देती हूँ कि ये मैप ही गलत ले जा रहा है एंड मेरी कोई गलती ही नहीं थी. ब्रिज के ऊपर से जाना है, नीचे से जाना है, लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, मुझे कुछ समझ नहीं आता मैप में. एंड मैं हमेशा गलत डायरेक्शन बताने के बाद ये बोल देती हूँ कि यार वो क्या है ना इंटरनेट कनेक्शन चला गया था, इस वजह से ना ये लोड नहीं हो पाया, इस वजह से हम रास्ता गलत जो है उस पर चले गए या हम रास्ता भूल गए और इस वजह से काफ़ी लोगों की लेन जो है वो भी मैंने गलत करवाई है. लेकिन लेकिन लेकिन आज मुझे पता चला कि गूगल मैप्स जो है वो ऑफलाइन भी चलता है. सो अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट नहीं काम कर रहा है तो भी आप एक ऑफलाइन ऑप्शन है गूगल मैप्स का, आप उसे जो है यूज़ कर सकते हैं. एंड थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था एंड वो अपडेट जो है वो मुझे गूगल मैप्स पे दिखने लग गए हैं, जहां पर हमने आपको ये बताया था कि आप गूगल मैप्स पे आप पार्किंग की जगह कहां कहां पर है वो भी देख पाओगे. सो फाइनली वो भी अपडेट जो है वो अब आपको देखने को मिल जाएगा. एंड ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे अपडेट्स हैं जो लोग मैप यूज़ नहीं कर पाते थे उनकी लाइफ को और आसान बनाने के लिए, या शायद मैं कहूँ कलेश कम करने के लिए, लड़ाई कम करने के लिए जो है ऐसे अपडेट्स लेकर आ चुके हैं. लेकिन सबसे बेहतर, सबसे एक चीज़ मुझे ये लगती है कि गूगल जो है अब वो ये बता सकता है गूगल मैप्स की ठंडी जगहें कहाँ कहाँ पर है, मतलब ऐसे कहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी करी जाए जो वो उबल के एकदम माइक्रोवेव वाली फीलिंग ना दे. सो बस अपनी गाड़ी को कूल रखो, खुद को कूल रखो, दिमाग को कूल रखो और कूल सॉन्ग ऑफ द आवर एंजॉय करो.
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: सर क्या बार ये बात है,
3: सूरज की बाहों में
0: किसी बहुत ही स्पेशल इंसान के लिए ये ट्रैक आपके रेडियो सेंस पर. सूरज की बाहों जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी से ये ट्रैक एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जी बिंदास.

0: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif, Alkhor.
2: Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
2: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
3: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिक.

0: देखिए पिया तो मिल जाएंगे लेकिन अच्छी चाय कहाँ मिलेगी ये आप मुझे बता दीजिए। देखिए मैं ना भोपाल से हूँ और ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, और भोपाल और कदर में सबसे एक बड़ी जो कॉमन चीज़ है वो एक बड़ी वाटर बॉडी तो है ही, ऑफकोर्स पानी से बहुत प्यार है लोगों को, लेकिन चाय और करक से भी बहुत ज़्यादा प्यार है। सो एक जल्दी से बढ़िया वाली जगह जहाँ जाके मैं चाय पी सकूँ वो मुझे बता दीजिए 3311063 पर। एंड वेलकम बैक करते हुए आपकी कशिश आ गई है लाइफ मस्त है शो लेकर आपके लिए 106.3 रेडियो ऑलिव पर। अब देखिए यार मैं ना अभी से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा बर्थडे आने वाला है। नहीं मेरा बर्थडे ना जून में आ रहा है, नहीं मेरा बर्थडे जुलाई में भी नहीं आ रहा है, मेरा बर्थडे अगस्त में आ रहा है। मेरा बर्थडे आ रहा है 21st ऑफ अगस्त को एंड मैं अभी से एक्साइटेड हूँ कि ओह फाइनली देखो जून जो है वो खत्म होने वाला है, फिर जुलाई आ जाएगा, फिर अगस्त में तो मेरा बर्थडे है ही। सो बस इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन आज किसी और बहुत ही स्पेशल इंसान का बर्थडे है, नहीं मैं उन्हें बिल्कुल नहीं जानती एंड वो मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते, मतलब मैं उन्हें पहचानती हूँ। सो अमाल मलिक जी का आज हैप्पी वाला बर्थडे है, आज आप उनका म्यूजिक स्पेशल भी सुन रहे हो, हर आर उनका एक स्पेशल गाना आपको सुनने को मिल रहा है। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि सिर्फ हमारे साथ ही नहीं होता, यानी आपके और मेरे साथ ही ऐसा नहीं होता है कि हमने सोचा कुछ था कि हम बचपन में जो है बड़े होकर ये करेंगे और बड़े होकर हम कुछ और करने लगे। अमाल मलिक के साथ भी ऐसा ही हुआ था। यूँ तो अनु मलिक जी जो है वो इनके अंकल है एंड ये म्यूजिक फैमिली से ही आते हैं, अरमान मलिक जो इनके भाई हैं वो भी एक म्यूजिशियन ही है, लेकिन इन्होंने ना बचपन में ये सोचा था कि मैं ना साउंड इंजीनियर बनूंगा और पढ़ाई भी उसी की, यानी इन्हें जो है जिंगल्स बनाने थे, इन्हें एड्स बनाने थे एंड इन्हें म्यूजिक देना था मूवी में, लेकिन इन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि म्यूजिक तो देंगे मूवी में लेकिन बैकग्राउंड में नहीं, ये प्रॉपर गाने बनाएंगे, गाने लिखेंगे, गाएंगे, इन्होंने कभी भी नहीं सोचा था। इसीलिए कभी भी आपको ना ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यार मैंने तो यही सोच लिया, मैं तो यही बनूंगा, हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ बेटर लिखा हो। साथ में देखिए मिथुन चक्रवर्ती जी का भी बर्थडे, उस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले अमाल मलिक का बर्थडे तो उनका स्पेशल वाला गाना सुन लेते हैं ना।
1: सुरों का कमाल,
2: घर से निकलते
1: नाम है अमाल। हैप्पी बर्थडे टू द हिट मशीन अमाल मलिक।
2: आशिक सरेंडर हुआ।
1: सुनिए दिन भर अमाल मलिक के हिट गाने।
0: दे दे प्यार दे मूवी से ये ट्रैक आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर। थोड़ी सी देर में एक मूवी रिकमेंड करने के लिए आऊंगी मैं, तब तक आप ये गाना एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ स्टे ट्यून्ड रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو اولیو 106.3 FM جیو بنداس. दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस.
2: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर.
1: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में.
2: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफ स्टाइल प्रिविलेजेस. बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए.
1: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026. दोहा बैंक लुलू MasterCard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक.
1: अरमान मलिक
0: 106.3 FM रेडियो ऑलिव
1: जियो बिंदास.
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

गाने का नाम मेहरम सचेत टंडन की आवाज में ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो आलम पर। मैं हूँ आपकी गजुस, शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि आपको अगर एक मूवी रिकमेंड करूंगी, सो अगर आप सोच रहे हैं कि यार कशिश क्या देखा जाए, अब ये सब जो जितना कुछ था तो सब देख लिया है और इतने ऑप्शंस में से एक चुनना भी मुश्किल हो जाता है, सो मोनिका ओ माई डार्लिंग ये जो एक मूवी है ये आप देख सकते हैं। राजकुमार राव ने बहुत ही अमेजिंग एक्टिंग करी है एंड मोनिका के रूप में आपको हुमा कुरैशी जो है वो इस मूवी में मिल जाएंगी। एंड अगर आपको थोड़ा सा यू नो डार्क कॉमेडी पसंद है या आपको थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है तो ये एक सबसे बढ़िया पिक जो है वो आपके लिए होने वाली है। नेटफ्लिक्स पे आपको मिल जाएगी बहुत ही आसानी से एंड जाकर देखिए। अगर आप रेट्रो म्यूजिक के शौकीन हैं तो बैकग्राउंड स्कोर आपको बहुत अच्छा लगेगा बिकॉज 70s और 80s का विंटेज वाइब जो है वो इस मूवी में दिया गया है। नेगेटिव्स भी हैं, जो सेकेंड हाफ है इस मूवी का वो थोड़ा सा जो है लंबा खिंच जाता है, लेकिन क्लाइमेक्स आते आते आपको मजा आ जाएगा। अगर मैं अपने हिसाब से कहूँ तो अ सॉलिड 4/5 तो मैं इसे देना चाहूंगी।

0: सॉन्ग ऑफ द ईयर
1: ये गाना।
2: फिलहाल चांद मेरा दिल मूवी से ये ट्रैक आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय करो। और मोनिका ओ माय डार्लिंग देखने के बाद मुझे बताओ कि आपको कैसी लगी मूवी। मैं हूँ आपकी कसूस, कहते रहो जियो बिंदास।

0: 106.3 FM, Gio Bindas.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.

ये जो मूवी है ना, इसका नाम है भूत, भूत पार्ट वन। एंड इस मूवी के बाद मुझे ऐसा लगने लग गया था कि यार एक बात बताओ, भूत पार्ट टू आई है नहीं आई है मुझे ही नहीं पता चला। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑल ऑफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश। ओए होए तो बजा ही नहीं, मैं आऊँ और ओए होए ना चले, ऐसा हो ही नहीं सकता। लाइव मस्त शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ। एंड यार मैं ना बस इसी चीज़ के बारे में बात कर रही थी कि कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें भूल जाना ही बेहतर होता है, अगर वो अच्छी नहीं है तो। जैसे एक फैशन जो है वो आया था जब मैं छोटी थी, और उससे पहले भी आया था, उसके बाद भी आया था, लेकिन अब वापस आ चुका है, वो है केपरी पैंट्स का। यानी वो वाली पैंट्स नहीं होती जो एंकल से थोड़ी ऊपर होती है लेकिन घुटने से थोड़ी नीचे होती है, बीच में कहीं जो है रह जाती है। मतलब वो होता है ना कि वो जो एक एवरेज बच्चा होता है जो ना बहुत अच्छा कर पाता है ना ही एकदम फेल होता है, तो ना उससे ऐसा मम्मी पापा उम्मीद कि तुमसे तो उम्मीद ही नहीं है ना ऐसा बोल पाते हैं, ना ऐसा बोलते हैं कि नहीं नहीं बेटा कोई बात नहीं दो मार्क्स ही तो काम आए हैं। वो मीडियोकर सा बच्चा होता है, बिल्कुल उसी तरीके की एक जो है मिड लेंथ सी अगर बोलूं तो एक केपरी पैंट जो है वो पहले बहुत चला करती थी, एंड अब उसका ट्रेंड वापस आ गया। मैं काफ़ी खुद को रोक रही थी काफ़ी समय से, क्योंकि काफ़ी समय से ट्रेंड चल रहा है कि यार कशिश नहीं बताते हैं, रहने देते हैं, कोई इन्फ्लुएंस हो गया तो। पर फिर मुझे रियलाइज़ हुआ मुझसे तो आप लोग कहाँ इन्फ्लुएंस हो गया, और मैं अपने व्यूज़ बताऊँगी आपको तो शायद अगर आपके वार्डरोब में ऑलरेडी वो रखी है तो उसे अच्छे तरीके से स्टाइल करने की आप कोशिश कर लें। लेकिन जेंजीज जो है, मैं आपको बता दूँ कि अब केपरी पैंट्स का फैशन जो है वो वापस लेकर आ गए। मुझे लगता है कि जब भी गर्मी आती है तो एक ना एक बार ये वाला फैशन वापस आ ही जाता है, लेकिन अब जो है ये केपरी पैंट्स थोड़े अलग टाइप से आई हैं। पहले डेनिम की आया करती थी या किसी मोटे फैब्रिक की आती थी, लेकिन अब केपरी पैंट्स जो है वो ज़्यादातर पैराशूट का जो एक कपड़ा हम कहते हैं ना, जो थोड़ा सा चिकना सा होता है, जो थोड़ा सा स्मूथ होता है, वो वाला कपड़ा जो है अब उसका उस फैब्रिक की ये केपरी पैंट्स आ रही है। एंड समर में काफ़ी सारे लोग इसे पहन रहे हैं, इंस्टाग्राम पे तो ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर्स जो है मुझे इसी को स्टाइल करते हुए दिख जाते हैं। अब पता नहीं कि अच्छा फैशन है या अच्छा नहीं है, मैं तो इसके बारे में कुछ ऐसे सोच नहीं पा रही हूँ। खैर आकर जो है थोड़ी सी देर में बात करेंगे फिटनेस की, सो आप स्टे ट्यून रहिए एंड ये अमेजिंग वाला गाना एंजॉय करते रहिए। विशाल मिश्रा की आवाज में बंदर मूवी का ये ट्रैक है, एंजॉय करो और कहते रहो जियो बिंदास।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.
1: Time check.
2: Brought to you by
1: Danat Al Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
0: Doha Bank और Lulu लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
3: अब अप्लाई कीजिए Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 Lulu शॉपिंग वाउचर।
0: Lulu स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स Lulu पॉइंट्स के फॉर्म में।
3: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए Lulu पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। Doha Bank Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
4: Hello listeners, मेरा नाम है राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM. जियो बिंदास.
5: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: दर्शन रावल जिस लड़की की बात कर रहे हैं ना इस गाने में, वो लड़की इस वक्त आपसे बात कर रही है। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश और शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड ऑफकोर्स एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे जलता चिराग, जैसे बन में हिरन जो भी है वो सब मैं हूँ। देखो कोई और तो कहता नहीं है, तो मैंने सोचा कि खुद से खुद की ही बात कर ली जाए। कोई बात नहीं। खैर, मैंने जैसे वादा किया था आपसे कि आकर आपको एक हेल्थ के बारे में बात बताऊंगी, तो आई एम नॉट श्योर, कभी ना कभी आपने ऐसे डिवाइसेस ज़रूर यूज़ किए होंगे जो आपकी हेल्थ इंडिकेशंस देते हैं, जैसे आपके स्टेप्स कितने पूरे हो गए, आपका हार्ट रेट कितना है, आपका बीपी कितना है, ये सब आपको बताते होंगे। ये वाले डिवाइसेज आपने ज़रूर पहने होंगे। मैंने भी घड़ी जो है कल स्मार्ट वॉच पहनी हुई थी एंड उसकी बैटरी जो है वो कम हो गई, तो फिर मैं उसे घर पर छोड़ाई आज। सो देखिए, ये वो कुछ डिवाइसेस हैं जो हम कभी कभार यूज़ कर लेते हैं अपनी हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए, लेकिन अब सिर्फ अपने स्टेप्स को मॉनिटर करना जो है ये काफ़ी नहीं है। अब जो है डिवाइसेस जो बन रहे हैं वो लॉन्जिटिविटी को ध्यान में रखकर बन रहे हैं, जो आपको ये बताते हैं कि आपकी बायोलॉजिकल एज कितनी है, आपका जो है ऑल ओवर हेल्थ जो है वो किस तरीके से, आपका सेल्यूलर हेल्थ जो है वो कैसा है, एंड आपको कोई पोटेंशियल क्रॉनिक डिजीज़ जो है वो तो नहीं है। और इसके लिए अलग अलग डिवाइसेस जो है वो मार्केट में आ चुके हैं, जैसे ऑरा रिंग की अगर मैं बात करूँ या वूप 5.0 के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो ये कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो ये पता करते हैं कि यार आपकी जो लाइफ है वो कितनी है एंड आप उसे कितनी और बढ़ा सकते हैं, कौन कौन से वो रीजंस हैं जिस वजह से आपकी लाइफ जो है वो कम हो रही है। काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ को आपने एक ब्लैक कलर की मेटल रिंग पहने हुई देखी होगी एंड लोगों को ऐसे लगने लग गया था कि ये तो फैशन स्टेटमेंट है, ये तो फैशन के लिए है, तो मार्केट में इसकी बहुत सस्ती कॉपीज़ भी आने लग गई, लेकिन ये कोई नॉर्मल आम मेटल रिंग नहीं है, ये जो है ऑरा रिंग है। इससे क्या होता है कि इनकी हेल्थ जो है वो चेक होती रहती है कि कहीं इन्हें कोई क्रॉनिक इलनेस तो नहीं है या कुछ ऐसा हो तो नहीं रहा है जिसके लिए डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। सो आप बताइए आपने कितने डिवाइसेस जो है वो यूज़ किए हुए हैं आपकी हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए। फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द आवर जो है वो आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: आप अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम। शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।

0: अगर इस वक्त मेरे दोस्त मुझे सुन रहे हैं या जिनके साथ भी मैं चिल करती हूँ वो मुझे सुन रहे हैं, तो मैं बता दूँ, अगर ये गाना प्ले करके मैं आंख बंद करके लेट गई हूँ किसी दिन, तो मुझे डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने चिल जोन में हूँ। वेलकम जी 106.3 रेडियो अलिफर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड स्टूडियो वाली क्लॉक में इस वक्त 12:28 हो रहे हैं एंड पता नहीं क्यों मुझे अभी से बहुत भूख लगने लग गई है। मैंने भरपेट नाश्ता किया है लेकिन फिर भी भूख लग रही है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑफिस में आती, इसीलिए मैं ऑफिस आती हूँ, नाश्ता करती हूँ, आप लोगों से बातचीत करती हूँ, फिर बाहर जाती हूँ, फिर लंच करती हूँ, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत काम करने की कोशिश करती हूँ, फिर चाय पीती हूँ, फिर थोड़ा और काम करने की कोशिश करती हूँ, फिर जाने का जो है टाइम होने वाला होता है तो उसका इंतज़ार करती हूँ। यही है मेरा रूटीन। और उस बीच वाली कोशिश में थोड़ी बहुत काम जो है, काम की कोशिश में बीच में काम हो जाता है तो हो जाता है। खैर, आज मैंने इंस्टाग्राम पे एक बहुत ही अच्छा कोट पढ़ा जिसके बाद मैं काम करने के लिए इतनी मोटिवेटेड हो गई हूँ कि मैं क्या बताऊँ। देखो यार, मैंने ना इंस्टाग्राम पे ये कोट पढ़ा और मैंने अपने कलीग जो मेरे साथ गाड़ी में आ रहे थे उन्हें भी ये बताया कि यार ये कोट कहता है कि आप चाहे चिल करके काम करो या स्ट्रेस लेके काम करो, आपको सैलरी उतनी ही मिलेगी और काम उतना ही मिलेगा, तो क्यों स्ट्रेस लेना है, चिल करके काम करो ना। देखो, डेडलाइन उतनी ही है, काम आप कर लोगे, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन हम स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, उस वजह से ना हमारा काम जो है बिगड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चिल करके जो है काम करो, होगा होगा, नहीं होगा तो थोड़ी सी डांट खा लेना, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका भी आज हैप्पी वाला बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे, आप जो है अमाल मलिक के साथ अपना बर्थडे जो है वो शेयर करते हैं। सो अमाल मलिक स्पेशल जो है आप आज सारा दिन रेडियो ऑलिव पर सुनने वाले, यानी हर एक घंटे में एक गाना जो है वो अमाल मलिक का होने वाला है।
1: सुरों का कमाल,
2: घर से निकलते
1: नाम है अमाल। हैप्पी बर्थडे टू द हिट मशीन अमाल मलिक। सुनिए दिन भर अमाल मलिक के हिट गाने।
0: फिलहाल अमाल मलिक का गाना चल वहां जाते हैं आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय करो अरिजीत सिंह की आवाज में। मैं हूं आपकी कशिश, लगा दूंगी थोड़ी सी देर में, कहते रहो मेरे साथ जियो बिंदास।

गणेश सेठ की आवाज में ये ट्रैक आपने एंजॉय किया मूवी जुग जुग जियो से। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑल पर, मैं हूँ आपकी कशिश और आप मेरे साथ लाइफ मस्त है शो जो है एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अब वक्त आ गया है मेरे यहाँ से जाने का। हाँ जी, मैं जाऊंगी तभी तो कल लौट के आऊंगी, लेकिन वैसे देखिए अमेजिंग वाले गाने तो आप सुनते ही रहेंगे रेडियो ऑल पर, सो एंजॉय करते रहिए। बाकी वही चीज कहूंगी जो हर रोज कहती हूँ कि गाड़ी जो है वो धीरे धीरे हौले हौले चलाइए, पानी पीते रहिए, सनस्क्रीन लगाते रहिए, खाना खाते रहिए, पानी तो मैंने बता ही दिया, खैर अपनों को भी याद दिलाते रहिए कि पानी पीना है, क्योंकि मेरे पास तो देखो रिमाइंडर आ जाता है बार बार कि पानी पी लो, पानी पी लेना चाहिए, पानी पीने का टाइम हो गया है। सो आप भी जो है पानी पीना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि गर्मी है यार, सबसे हेल्दी चीज अगर कुछ होती है तो वो होता है पानी पीना। और ये मैं आपको बस इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे भी पता है, मुझे भी इस पे अमल करना है। फिलहाल अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपकी रेडियो सेट्स पर। रेडियो

0: सॉन्ग ऑफ द ईयर
1: ये गाना।
2: मैं जाती हूँ, जरा खाना खाती हूँ, लिपस्टिक लगाती हूँ, आप जब तक ये गाना एंजॉय करो लिपस्टिक लगा के। अदनान सामी जी की आवाज में अमेजिंग वाला ट्रैक है, एंड सिमरन ने जो है बहुत ही अमेजिंग इंटरव्यू लिया है अदनान सामी जी का, आप रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके देख सकते हैं। मिलते हैं कल, टाटा बाय बाय, जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफ स्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply. Football boundaries नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता। इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया। अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया। No matter where the game is, identity हमेशा साथ रहती है और यही है द हिवारी इनिशिएटिव जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। कल्चर ट्रेवल्स, फुटबॉल कनेक्ट्स एंड हिवारी इज ब्रिंगिंग कतर टू द वर्ल्ड। शैकमैन की पावर पैक्ड रेंज, हैवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ।

0: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टरकार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।
2: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।

0: नमस्कार वणक्कम, मैं हूँ जैकी श्रॉफ।
1: जैकी श्रॉफ
2: रेडियो 106.3
0: जे ओ बिंदास। ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
3: रेडियो ऑलिव, हम नंबर वन।
4: ऑलिव म्यूजिक मैराथन, एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक गाने।

0: दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063. Olive Music Marathon. 1 ghanta, 1 ghanta. Non-stop back to back.

0: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
1: Olive Music Marathon. एक घंटा non-stop back to back गाने.

0: Listening to Radio Olive 106.3 FM. इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहां हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहां हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहां सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। FIFA की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ओलिव
1: इन एसोसिएशन विद।
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
2: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर। फुटबॉल बाउंड्रीज नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता। इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया। अपने ट्रेडिशनल कतरी थोब में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया। नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है। और यही है द हिवारी इनिशिएटिव, जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। Culture travels, football connects, and Hiwari is bringing Qatar to the world. Shackman ki power-packed range, heavy trucks, tippers, trailers, aur boom trucks. Damdar performance aur bharosa, sirf Carmel ke saath. Visit Carmel Group now.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: श्रेया घोषाल की आवाज में बहुत ही सुंदर गाना, फुल ऑफ नॉस्टैल्जिया. नहीं याद आ गया वो वाला टाइम, क्या बढ़िया था. इस टाइम के जो इंडी पॉप गाने आते थे अमेजिंग, और उनका जो वीडियोग्राफी था ना वो कुछ अलग ही होता था यार. क्या सुंदर सुंदर क्यूट क्यूट स्टोरीज आती थी उसमें. यू आर लिसनिंग टू रेडियो लव 106.3 एफएम, तनिषा के जी आपके साथ. ऑलिव रिचार्ज लेकर अ वेरी गुड आफ्टरनून मेरी जान. सजना नहीं, खुद के लिए सजो मेरी जान.
1: तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आ चांदनी.
0: बहुत प्यारा गाना है.
2: देखने में कैसी सीधी सादी लगती है, बोलती के वो तो कुछ नहीं समझती, अंदर से कितनी तेज है.
0: बात तो सही कही है अली जफर भाई ने. यहाँ है जी, ये भी लाइन अप है आपके लिए. इस घंटे में ढेर सारे अमेजिंग गाने हैं, बहुत सारी बातें करनी है हमने, एंड सब कुछ होगा. लेकिन सबसे पहले आपको पता है जो एक रिचुअल है वो तो है, तो वो तो करना ही है. बताइए मुझे फटाफट से, मैसेज कीजिए 3311063 पर. कैसे हैं आप, क्या हाल चाल है मेरी जान. जून 16th ट्यूजडे का दिन कैसा ट्रीट कर रहा है आपको? व्हाट्स द मूड फॉर द डे? ऑफिस में सब बढ़िया चल रहा है? किसी से कोई कहा सुनी तो नहीं हुई? हो भी गई तो छोड़ो यार, छोटी छोटी बातें होती रहती हैं. ऐसे दिमाग में लोड लेके बैठे रहोगे तो कैसे चलेगा यार. बाकी अभी एक बहुत शानदार गाना भेज रही हूँ आपके लिए, बुलेया वे मधु शर्मा और अशोक मस्कीन साहब की आवाज में. सुनते रहिए रेडियो 106.3 FM. जियो बिंदास मेरी जान.

0: भाई साहब, ये सुन के आपको पानी पीना तो याद आ ही गया होगा।
1: रेडियो ऑलिव वाटर रिमाइंडर,
2: पी लिया पानी।
3: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
4: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
3: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
4: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
3: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
5: हेलो नमस्कार, मम्मा मिया, मैं हूँ चंकी पांडे और आप सुन रहे हो मुझे रेडियो ऑलिव

Tanisha. Tanisha. श्रेया घोषाल और राहत फतेह अली खान साहब की आवाज में बॉडीगार्ड मूवी से तेरी मेरी प्रेम कहानी एक्सट्रीम वाला दर्द भरा हुआ ये गाना, बट बहुत कमाल यार मूवी में बढ़िया लगी थी वैसे मुझे बॉडीगार्ड। ये आपने देखी है, कैसी लगी आपको बताइए मुझे। यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल 106.3 FM, तनिषा आपके साथ ऑल ओवर चार्ट चल रहा है यहाँ पर, एंड वी आर गोना टॉक अबाउट अ जापानीज लेजेंड। जी सो ये जो लेजेंड है, इट सेज कि इफ यू मिस द बस, मे बी आपने एक एक्सीडेंट अवॉइड कर दिया है। If you got rejected, maybe you were saved from a wrong place. If they left, maybe they made room for who is coming, and maybe that is better. The universe protects you in ways that look like bad luck at first, but trust the detour, mere jaan. And that is the gist, yaar, ki theek hai, ho rahi hai cheeze life mein, and it is not going accordingly, jo aapne socha tha, waisa nahi ho raha hai. थोड़ा लंबा रास्ता लेकर मंजिल पर पहुंचने वाले हो। और वो कहते हैं ना, अगर आपकी मर्जी का हुआ तो ठीक, और आपकी मर्जी का नहीं हुआ तो ऊपर वाले की मर्जी का होगा, और वो हमेशा बेहतर होता है। क्योंकि हम ना अपनी कैपेबिलिटीज से कम ही मांगते हैं, हम कभी भी ओवर एस्टिमेट नहीं करते खुद को। व्हेनेवर वी आर आस्किंग फॉर समथिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, एंड यूनिवर्स इज रेडी टू गिव यू मोर देन व्हाट यू वांट। सो बस उसे एक्सेप्ट करना सीखो, छोटी छोटी बातों पे निराश नहीं होते मेरी जान। सेंडिंग कूल सॉन्ग ऑफ द आवर वैशाली समद की आवाज में, सजना है मुझे सजना के लिए। स्टे ट्यून्ड रेडियो बिंदास, रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफ स्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
2: Football boundaries नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता। इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया। अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया। No matter where the game is, identity हमेशा साथ रहती है और यही है द हिवारी इनिशिएटिव जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। कल्चर ट्रेवल्स, फुटबॉल कनेक्ट्स एंड हिवारी इज ब्रिंगिंग कतर टू द वर्ल्ड।
3: Doctor on air. Brought to you by Naseem Healthcare.
4: Do you know the number one reason why adults lose their teeth is not because of cavities? It is because of gum disease, also called as periodontitis. Hello, my name is Dr. Mohammed Basil. I'm a periodontist from Naseem Medical Center. Now, the starchy and the sugary food debris that is left behind in your mouth after each of our meals interacts with certain bacteria and forms a soft coating on the teeth called as plaque, which can be removed by proper toothbrushing. But if left behind, it hardens to form something called as calculus or tartar, which can only be removed by professional cleaning. When untreated, it irritates the gum tissues, leading to inflammation of the gums. This inflammation then spreads to the bone supporting your teeth, causing bone loss and ultimately loss of your teeth. So make sure you visit your dentist before you go from a beautiful smile to a toothless smile.
2: Doctor on air. Brought to you by Naseem Healthcare. Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas.
6: Olive Recharge.
7: This hour is brought to you by
8: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
1: In association with
0: Doha Bank,
1: make shopping more rewarding. Get a 500 Qatri Riyal Lulu voucher with your new Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card. Just spend 1 Qatri Riyal to unlock up to 5% rewards. Apply before June 30th. TNC apply.

0: तनिषा
1: अली जफर की आवाज में वो देखने में कैसी सीधी साधी लगती है, बोलती कि कुछ नहीं समझती पर अंदर से बहुत तेज है, अग्री करती हूँ मैं जान से। You're listening to Radio All Over 106.3 FM, तनिषा आपके साथ। All Over Recharge चल रहा है यहाँ पर। और भाई बधाइयां जी, बधाइयां। कतर रैंक्ड फर्स्ट इन द MENA region in 2026 Global Peace Index. Yes, and it reinforces Qatar's position as one of the most stable and secure countries in the region. And we all have been living here. हमसे बेहतर ये चीज़ कौन जान सकता है ना। कतर ऑल्सो रिकॉर्डेड इम्प्रूवमेंट इन सोसाइटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कैटेगरी। आई एब्सोल्युटली लव दिस, यू नो, सेफ्टी वाला जो एक फैक्टर है ना कतर में, वो तो मुझे बेहद पसंद है। एंड वेरी कन्वीनियंट द लाइफ स्टाइल इज, एंड इट इज़ वेरी पीसफुल एंड काम। ऐसे रश नहीं हो रहा है चीज़ों को लेकर, सो दैट मेक्स मी रियली हैप्पी दैट आई एम इन कतर। एंड ये जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है, ये एनुअली पब्लिश होता है बाई द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, एंड वो इवेल्युएट करते हैं कंट्रीज को ऑन द बेसिस ऑफ सोसाइटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ऑन गोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, लेवल ऑफ मिलिटराइजेशन। इन सब चीज़ों में असेसमेंट होती है, और यू नो, कंट्री की स्टेबिलिटी, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिवनेस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ को देख कर ये रैंकिंग की जाती है, और उसमें कतर टॉप कर रहा है ब्रो। सो बधाइयां जी, बधाइयां। इसी बात पे अमाल मलिक साहब का बर्थडे है, तो उनका एक स्पेशल गाना भी हो जाए, बहुत सुंदर गाना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा। स्टे ट्यून एंड जियो बिंदास।
0: सुरों का कमाल,
2: घर से निकलते,
0: नाम है अमाल। हैप्पी बर्थडे टू द हिट मशीन अमाल मलिक।
2: आशिक सरेंडर हुआ।
0: सुनिए दिन भर अमाल मलिक के हिट गाने।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो Ooredoo ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद Ooredoo.
2: ओनली लगा और हो जा रिचार्ज. ओनली रिचार्ज.
0: ओनली रिचार्ज. रेडियो ओलिव 106.3 FM पर. जियो बिंदास.
2: ओनली रिचार्ज.
3: This hour is brought to you by
1: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa. In association with
4: Doha Bank,
1: make shopping more rewarding. Get a 500 Qatri Riyal Lulu voucher with your new Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card. Just spend 1 Qatri Riyal to unlock up to 5% rewards. Apply before June 30th. TNC apply.

0: Tanisha.
1: You are listening to Radio Oliver 106.3 FM. Arijit Singh ki awaaz mein kesariya suna aapne Brahmastra movie se. Aur bhai agar जब भी कोई हमारे देश आता है लाइक इफ आई एम इन इंडिया और कोई बाहर से आया है इंडिया में तो मैं चाहूंगी कि मैं यू नो इंडिया के बारे में सब कुछ उन्हें बताऊं घुमाऊं अच्छे से उन्हें फुल इंफॉर्मेशन हो हमारे कल्चरल हेरिटेज के बारे में. सेम वे कतर में रहते हुए इफ यू फील दैट कि यू नो कोई बाहर से आ रहा है और उन्हें प्रॉपर इंफॉर्मेशन सही सोर्सेज से मिलनी चाहिए कि यू नो व्हाट इज द हिस्ट्री व्हाट इज द हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ कतर और क्या क्या अमेजिंग चीजें सो फार हमने अचीव कर ली है. ये सब चीजें अगर आप बताना चाहते हैं तो एक बहुत ही बढ़िया चीज मैं आपको बताती हूँ. कतर टूरिज्म ने ओपन किया है रजिस्ट्रेशन फॉर टूर गाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम. यस एंड इट बेसिकली एम्स टू डेवलप क्वालिफाइड लोकल टूर गाइड जिनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो जो टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें सही चीजें पता चलें. इसलिए जनरल लाइसेंसिंग मॉड्यूल जो है इट विल रन फ्रॉम 5th जुलाई टू 2nd अगस्त और यह जो प्रोग्राम है टारगेट्स 15 से लेकर 25 कतरी सिटीजन्स एंड रेसिडेंट्स इंटरेस्टेड इन बिकमिंग लाइसेंस्ड टूर गाइड्स. तो इफ एनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज गो थ्रू दैट चेकआउट कीजिए उनकी वेबसाइट पर जाकर एंड यू नो पार्टिसिपेंट्स विल रिसीव कतर्स हिस्ट्री एंड हेरिटेज का ट्रेनिंग कल्चर एंड ट्रेडिशंस के बारे में बताया जाएगा आपको टूरिज्म अट्रैक्शंस प्रोफेशनल टूर गाइडिंग स्किल्स विजिटर एंगेजमेंट एंड सर्विस एक्सलेंस एंड वंस you have you know successfully completed the program it will be a key step towards obtaining an official tour guide license in Qatar और जो एप्लीकेंट्स हैं उनकी एज 21 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए 21 ईयर्स से अबव होनी चाहिए एंड यू शुड हैव अ वैलिड QID टू क्वालिफाई फॉर टूर गाइड लाइसेंसिंग. सो एनीबॉडी यू नो और यू आर इंटरेस्टेड इन दिस गो फॉरवर्ड एंड चेक इट आउट एंड एनरोल योरसेल्फ. और सुनते रहिए रेडियो ऑलिव थ्रू बिंदास.

0: भाई साहब ये सुन के आपको पानी पीना तो याद आ ही गया होगा।
1: रेडियो ऑलिव वाटर रिमाइंडर,
2: पी लिया पानी।
3: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
4: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500

0: लूलू शॉपिंग वाउचर।
1: लूलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लूलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
0: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लूलू पर, मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
1: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक, लूलू, मास्टर कार्ड, प्लैटिनम। शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।
2: मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो अलविदा।

0: अमित मिश्रा और अनुष्का के आवाज में मनमाय इमोशन फ्रॉम द मूवी दिलवाले ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम। तनिषा आपके साथ ऑल ओवर चैट चल रहा है यहाँ पर, और भाई दोहा बैंक और लुलू आपके लिए जो कमाल ऑफर लेकर आया ना, इट विल मेक योर शॉपिंग मोर rewarding and amazing. जी, all you have to do is just apply for Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card और you can get up to 500 रियाल का Lulu Shopping Voucher. And not just that, जब भी आप Lulu Store पर spend करेंगे आपको 5% savings मिलेंगी Lulu Points के form में, तो वो आप बाद में redeem कर सकते हैं. Also you can enjoy airport lounge access, my book offers, dining deals और lifestyle privileges. बस card activate करना है Lulu पर, एक रियाल मिनिमम आपने स्पेंड करना है और रिवॉर्ड्स का मजा ले सकते हैं. दैट्स ऑल. दिस ऑफर इज वैलिड टिल 30th June ओनली, सो फटाफट से जाइए और अप्लाई कीजिए फॉर दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड, एंड अपनी शॉपिंग को और भी मजेदार बनाइए. और सुन रही है रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

0: Kolkata's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: क्या आप एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर हैं? तो अब अपनी स्किल्स को प्रूव करने का वक्त आ गया है. हासिल कीजिए एक ऑफिशियल कारामा सर्टिफिकेशन. पाइए अपना लाइसेंस जो आपके लिए कतर में नए जॉब अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल देगा. एक ऐसे सर्टिफिकेट के साथ जो आपकी ब्रिलियंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का कमिटमेंट शो करता है. इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए. अभी रजिस्टर कीजिए और बन जाइए अपने फील्ड के टॉप कॉन्ट्रैक्टर्स और टेक्नीशियंस में से एक. बस विजिट कीजिए कारामा की वेबसाइट www.km.qa और खुद को कीजिए सर्टिफाइड. बनिए सर्टिफाइड के साथ. बनिए
2: लगा और हो जा रिचार्ज.
3: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास.
4: This hour is brought to you by
5: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
6: In association with
7: Doha Bank,
6: make shopping more rewarding. Get a 500 Qatri Riyal Lulu voucher with your new Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card. Just spend 1 Qatri Riyal to unlock up to 5% rewards. Apply before June 30th. TNC apply.

0: Tanisha.
1: अलका याग्निकर बाबुल सुप्रियो की आवाज में हम तो मूवी से बहुत सुंदर गाना ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM तनिषा के साथ सुना आपने. ऑल ऑफ रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर और प्रियंका चोपड़ा ने एक और बढ़िया चीज ऐसे हासिल कर लिया. देर इज अनदर फेदर इन हर कैप. सो ग्लोबल आइकन तो वो बन ही चुकी हैं. इंडिया को हर स्टेज पे रिप्रेजेंट कर रही हैं. वो जहाँ भी जाती हैं अपनी इंडियन आइडेंटिटी को जितने प्राउड के साथ वो कैरी करती हैं, इट इज सो अमेजिंग एंड इट इज सो inspiring. Now Rolex has named Priyanka its global ambassador. Bulgari ki to wo global brand ambassador hai hi, and Ralph Lauren ki wo long term brand partner ban chuki hai. Bentley ki wo global brand ambassador hai. Tag Heuer ki brand ambassador hai wo, and now Rolex, and that is amazing yaar. मतलब जितनी फियर्स और आइकॉनिक उनकी पर्सनालिटी है ना, ये सब तो वो डिजर्व करती है यार. आगे और भी आएगा. हाँ जी, सेंडिंग एन अमेजिंग ट्रैक होसाना इन द वॉइस ऑफ सुज़ैन डीमेलो एंड लियोन, ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM. जी बिंदास.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफ स्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: लगा और हो जा रिचार्ज।
4: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
3: ऑलिव रिचार्ज।
5: This hour is brought to you by
6: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
7: In association with
8: Doha Bank,
7: make shopping more rewarding. Get a 500 Qatri Riyal Lulu voucher with your new Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card. Just spend 1 Qatri Riyal to unlock up to 5% rewards. Apply before June 30th. TNC apply.
4: Radio Oli.

0: तनिषा।
1: मैं बता रही हूँ, अगर अभी तक नहीं देखी है तो देख लो, अभी आपने इंस्टाग्राम पे वो पोस्ट देखना शुरू कर दिए होंगे कि आज बोलोगे कि इट इज अ बोरिंग मूवी, 5 साल बाद बोलोगे यार इम्तियाज अली ने तो मास्टरपीस बनाया था। एंड इट इज ब्यूटिफुल, दिस मूवी इज, प्लीज गो एंड वॉच इट इन थिएटर्स सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन इट। फिर ऐसे कुछ सालों के बाद जब ये री रिलीज होगी थिएटर में तब देखने जाएंगे, जैसे अभी हो रहा है तमाशा एंड रॉक स्टार एंड ऑल के साथ। सो डू गो एंड वॉच इट। एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM, तनिषा आपके साथ। ऑल ऑफ रीच आउट चल रहा है अब बाकी विजडम में। आज हम जापान की बात करेंगे और जापान के एक बेसिकली जॉब रूल के बारे में। सो जितनी भी वर्किंग स्पेसेस है जापान में, वहाँ पर जब कोई एम्प्लॉई बहुत सालों से वो एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, नाउ ही हैज और शी हैज कम टू एन एज जहाँ पर वो और काम नहीं कर सकते हैं, तो कंपनीज उन्हें सीनियर एग्जीक्यूटिव रोल पर डाल देती हैं। They just have to come to the office, they will get the senior executive salary and they just have to sit in the office, chill, have tea, newspaper padho aur you know colleagues se baatein karo, apna experience share karo, that's all. You don't have to work, you're not you know liable to give any answers ya progress report, nothing. You don't have to do anything. It's a reward because you have been loyal to the company for so many years and you deserve it. And loyalty ko reward karna ek bahut important ट्रेडिशन है जापानीज कल्चर में, और ये उनकी कंपनीज में भी देखने को मिलता है। एंड दैट इज सच अ ब्यूटिफुल थिंग, वेयर एज वी हैव सीन कि जहां पर एक एज क्रॉस कर लेते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो दे से कि भाई आप रिटायर हो जाओ और आगे का क्या है वो आपको अपना देखना है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सो आपने जो इतने सारे साल अपनी जिंदगी के एक कंपनी को दिए हैं, दे डोंट इवन थिंक अबाउट यू कि आप आगे क्या करने वाले हो। वेयर इज जापानीज पीपल आर डूइंग दिस एंड दिस इज अमेजिंग। सच में यार अलग लेवल पे चलते हैं ये लोग। Well, on that note, sending a very beautiful track. So, trust again in the voice of Arijit Singh or legendary Tulsi Kumar. Stay tuned and Jio Vindas.
2: Suro ka kamal.
3: Ghar se nikalte.
2: Naam hai Amal. Happy birthday to the hit machine, Amal Malik.
4: Aashik surrender hua.
2: Suniye din bhar Amal Malik ke hit gaane.

0: शाह
1: एवी सैरा और करण औजला की आवाज में दीदी प्यार दी टू से तीन शौक ओनली ऑन रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम तनीषा आपके साथ ऑल ओवर डॉट चल रहे हैं अब
2: ये है चलते फिरते डिक्शनरी
1: और आज जो मैं अपनी डिक्शनरी से वर्ड लेकर आई हूँ ये तो हम सब ने कई बार किया है. हम अपने सामने बहुत टेस्टी फूड या अपना फेवरेट कोई खाना देखते हैं और अभी वो गर्मा गर्म ही है पर हमें इतनी जल्दी है खाने की उसमें से इतना यू नो अमेजिंग अरोमा आ रहा है एंड यू लव दैट डिश आप वो गर्म गर्म ही उठा के मुँह में डाल लेते हो और फिर जो हमारे मुँह के अंदर क्योस हो रहा होता है कि यू नो फू फू करके जो हम बाहर से या तो मुँह को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं इधर उधर जंप करवा रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म है और आपके

0: भाई साहब ये सुन के आपको पानी पीना तो याद आ ही गया होगा।
1: रेडियो ऑलिव वाटर रिमाइंडर,
2: पी लिया पानी।
3: दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
4: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
3: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
4: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफ स्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर, मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
3: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
5: Hi everyone, this is Benny Deol here. Olive Radio 106.3. Jubindas.
6: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा. In association with
3: Doha Bank,
2: make shopping more rewarding. Get a 500 Qatri Riyal Lulu voucher with your new Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card. Just

0: तनिशा मोहित चौहान की आवाज में शहर में हूँ मैं तेरे आके जरा मिल तो ले। मुझे जैसे ही कोई ये बोलता है ना मैं तो अपना फोन ही आउट ऑफ रीच कर देती हूँ। आई एम सो नॉट अ पर्सन यू शुड कॉल टू मीट रैंडमली। मुझे पूरा प्लान चाहिए पहले से क्योंकि मुझे खुद को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है ऐसे यू नो गैदरिंग्स में जाने के लिए। तो ये इंस्टेंट इम्प्रॉम्प्टू प्लान्स डजंट वर्क विद मी बाबा। यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल 106.3 एफएम। तनिशा आपके साथ ऑल रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर। और हमने कुछ देर पहले जापान के रूल की बात करी थी, अब मैं नॉर्वे की बात करती हूँ। सो वर्किंग कल्चर राइट नाउ ये हो चुका है कि मोस्ट ऑफ द जगहों पर यही देखा जाता है कि जो इंसान ओवर टाइम कर रहा है यू नो जो वीकेंड्स पर भी काम कर रहा है रात को देर देर तक काम कर रहा है वो हसलर है, वो डेडिकेटेड एम्प्लॉय है, वो हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय है। बट नॉर्वे में देयर वाज दिस गाय, उन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस लिंक्डइन पोस्ट पे डाला था एंड आई सॉ दैट एंड आई वाज लाइक वाओ। सो दिस गाय सेज कि मैंने 15 इयर्स नॉर्वे में काम किया है। इनिशियली व्हेन आई यू नो मूव्ड फ्रॉम इंडिया टू नॉर्वे मैं संडेज को भी काम कर रहा हूँ, मैंने वेकेशन लिया था, मैं उस वेकेशन पे भी अपना काम करके भेज रहा हूँ, मैं ऑफिस में देर तक रुक के अपना काम ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास डेडलाइन है, सो आई वांट टू यू नो फिनिश माय वर्क। मुझे एक दिन थक हार के मेरे बॉस ने इतना डांटा है कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो। उसे लगा मुझसे क्या गलती हो गई है, मैं तो अपना काम बहुत ध्यान से कर रहा हूँ। तो बॉस कहते हैं कि ये जो आप वेकेशन पे काम कर रहे हो, वीकेंड्स पे काम कर रहे हो, एक्स्ट्रा रुक रुक के काम कर रहे हो, इससे कितना गलत असर पड़ेगा आपके जो जूनियर्स हैं, आपसे जो बाद में लोगों ने ज्वाइन किया है उनके ऊपर, कि यही तरीका होता है काम करने का। बट दिस इज़ नॉट द वे, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर पर्सनल लाइफ एज वेल। आप अगर खुद ही बैलेंस मेंटेन नहीं करोगे अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में तो कैसे चलेगा। नो, यू आर नॉट अलाउड टू वर्क एनी मोर ऑन द वेकेशंस और द वीकेंड्स और ओवर टाइम। एंड आई वॉज रीडिंग दैट पोस्ट एंड आई वॉज लाइक वॉट, ये भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता ज्यादा लग रहा है, बॉस कम लग रहा है। बट या दैट इज द रूल इन नॉर्वे, यू कैन नॉट डू दैट। आप ओवर टाइम नहीं कर सकते, आपके पास जितना वक्त है जो आपके ऑफिस आवर्स है उसमें काम खत्म हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो अगले दिन आकर करो। वेकेशन पे गए हो तो फोन को हाथ भी मत लगाओ जो ऑफिस वाला है। एंड आई लव इट, यस मूविंग टू नॉर्वे ब्रो, नो नो नो। Sending an amazing track your way. Stay tuned, Andrew Bindas. Cool song. Radio Olive par. Aane wala gana. Cool song of the hour.
1: Cool song of the hour. Cool song. Kya baat hai sir? Kya baat? Ye baat hai. Cool song.

0: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
1: दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
2: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
1: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
2: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
1: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलू मास्टरकार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।
3: ऑनली लगा और हो जा रिचार्ज। ऑलिव रिचार्ज।
4: ऑलिव रिचार्ज। रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
3: ऑलिव रिचार्ज।
5: This hour is brought to you by
6: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
7: In association with
8: Doha Bank,
7: make shopping more rewarding. Get a 500 Qatri Riyal Lulu voucher with your new Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card. Just spend 1 Qatri Riyal to unlock up to 5% rewards. Apply before June 30th. TNC apply.

0: तनिषा
1: राइट हियर राइट नाउ बोल रही हूँ, अगर अभी तक नहीं किया तो कर लो, समझ रहे हो बात को? यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 FM, तनिषा है आपके साथ, ऑल रिचार्ज चल रहे हैं यहाँ पर। क्या करने को बोल रही हूँ मैं आपको, बोल रही हूँ कि हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर लो, क्योंकि वी आर पोस्टिंग सच अमेजिंग स्टफ ओवर देयर। राइट नाउ वी आर डूइंग अ सीरीज ऑफ वीडियोज ऑन सो फार जितने भी फीफा मैचेस हुए हैं, उनमें जो भी अमेजिंग चीजें हुई हैं और जो अमेजिंग प्लेयर्स हैं उनकी हिस्ट्रीज, everything about FIFA is going on over there, so आप miss out ना कर जाएं, check out कीजिए if you are a FIFA fan. Also there are contests going on, so उसमें participate कीजिए, you never know you might win something really amazing मेरी जान. And randomly also we keep posting, हमें पता चलना चाहिए ना कि आप तक चीजें पहुंच रही हैं, तो जब तक आप follow नहीं करेंगे, like, share, comment नहीं करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा बताओ? So जाओ radioolive.qa is the handle, follow कीजिए हमें, और कूल सॉन्ग ऑफ द आवर भेज रही हूँ आपके लिए, जरा नजरों से कह दो, ओए होए समझ जाऊंगी मैं, आप मुझे मैसेज कर दो मैं समझ जाऊंगी, वॉइस नोट भी चलता है मुझे, हाँ 3311 1063 पर स्टे ट्यून्ड एंड रियो बिंदास मेरी जान।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas Doha Bank और Lulu लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस.
1: अब अप्लाई कीजिए Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 Lulu Shopping Voucher.
0: Lulu Stores पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स Lulu Points के फॉर्म में.
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफ स्टाइल प्रिविलेजेस. बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लूलू पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए.
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026. Doha Bank Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
2: Football boundaries नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता. इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया. अपने ट्रेडिशनल कतरी थोब में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया. नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है और यही है द हिवारी इनिशिएटिव जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है. कल्चर ट्रेवल्स, फुटबॉल कनेक्ट्स एंड हिवारी इज ब्रिंगिंग कतर टू द वर्ल्ड.
3: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
4: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
3: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन
4: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
3: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
5: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
6: Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas.
7: Olive Recharge.
8: This hour is brought to you by
9: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
10: In association with
11: Doha Bank,
10: make shopping more rewarding. Get a 500 Qatri Riyal Lulu voucher with your new Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card. Just spend 1 Qatri Riyal to unlock up to 5% rewards. Apply before June 30th. TNC apply.

0: तनिषा।
1: वो कुछ गाने आते हैं ना जिनकी एक आधी लाइन आपको बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है और वो अटक जाती है दिमाग में, ये कुछ वैसा ही गाना था। साडी सुरेन द वॉइस ऑफ हर्ष नुस्सी, एंड ये इंस्टाग्राम पे फेमस हुआ और इसकी वो एक लाइन जो है तेनू पौना जिद दिल दी, वो अटक चुकी है। सो लोग पूरा गाना सुन लेते हैं उस एक लाइन की वजह से जो कि एंड में आती है। आर्टिस्ट स्मार्ट है वैसे ही। यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल एफ 106.3 एफएम, तनिषा आपके साथ ऑल एवरी चार्ट चल रहा है यहाँ पर। और फिलहाल वक्त हो गया मेरे जाने का मेरी जान, मिलते हैं कल दोपहर 2 बजे वेंसडे। यस, वीकेंड के थोड़ा और नजदीक राहत की सांस बढ़ जाएगी। राहत फतेह अली खान साहब की तो सही चल रही है, हमारी राहत जो हमें सुकून मिलेगा वो यस, आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। और ऐसे बहुत ही जोर से मेरी याद आए ना तो बिंदास मैसेज कर देना, ठीक है, 3311-1063 पर। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं, radioalive.qa इज द हैंडल। और अपना ढेर सारा ख्याल रखें मेरी जान, इस गर्मी में स्टे हाइड्रेटेड। वाटर रिमाइंडर तो हम आपको हर थोड़ी देर में दे ही रहे हैं, बट फिर भी ख्याल है आपका बहुत, यू नो, चिंता करती हूँ, इसीलिए एक बार फिर बोल रही हूँ, स्टे हाइड्रेटेड एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास।
0: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश है, ये गाना फ्रेश है, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर, ये गाना

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। बिंदास। शैकमैन की पावर पैक्ड रेंज, हेवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कारमिल के साथ। विजिट कारमिल ग्रुप नाउ। इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहाँ हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। फीफा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ओलिव
1: इन एसोसिएशन विद।
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
2: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर।

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिन

0: भाई साहब ये सुन के आपको पानी पीना तो याद आ ही गया होगा।
1: रेडियो ऑलिव वाटर रिमाइंडर,
2: पी लिया पानी।
3: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहाँ हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं,

0: दिलों की धड़कन शोर करती है और ऑडियंस चीयर नहीं रोर करती है, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन. FIFA की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ऑल एयर
1: इन एसोसिएशन विद.
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स.
2: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर. दोहा बैंक और लुलु लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस.
3: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर.
0: लुलु स्टोर पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में.
3: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस. बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए.
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026. दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग. TNC अप्लाई.
4: हाय गाइस, दिस इज बारफती खुराना और आप मुझे सुन रहे हो रेडियो ओलिवर.
5: Zabardast evening, make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

हां जी आपके लिए तो मैं इतना कर सकती हूँ यार।

0: सो आज के फीफा वर्ल्ड कप के मैच के बारे में बात करते हैं जो कि रात के 10 बजे होने वाला है फ्रांस एंड सेनेगल के बीच में, एंड रात के 1 बजे इराक वर्सेस नॉर्वे के बीच में मैच जो है वो होने वाला है। एंड फीफा का फीवर जो है वो अपने कतर में ऑन है। बहुत सारी जगहें हैं जहां पर आप लाइव मैचेस जो है वो देख सकते हैं। मैं इंतजार कर रही हूं इस थर्सडे का रात को 1 बजे जो है वो कतर वाला मैच जो है वो होने वाला है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो या थर्सडे के टाइम पे तो हम लेट नाइट जो है वो मैच देख ही सकते हैं। बाकी दिन जो है वो थोड़ा सा मेरे लिए सौखा हो जाता है, लेकिन मेरे दोस्त लोग जो है वो अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो वो उनका थोड़ा सा दिक्कत जो है वो रहती है। सबके अपने अपने काम रहते हैं। सो या आप बताइए, क्या आप सुपर डुपर एक्साइटेड हैं कतर के मैच के लिए, आने वाले के लिए? बताइएगा मुझे 3311063 पर। सिमरन कौर है आपके साथ, जियो बिंदास।
1: ये खेल है ब्लॉकबस्टर। In association with... Download the City Exchange mobile app now to send money quickly at the best exchange rates.
2: Also, Palm Swiss Gold Bars are now available at the best price at City Exchange,
1: your trusted remittance partner.
3: Ab suniye, Olive ka zabardast hai.
4: Abhi baja aayega na bhido.
5: Namaste behno aur bhaiyo, bade hi kam shabdon mein aapko sunana chahta hu. उस साल का लोकप्रिय गीत ये सलाम दे जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

0: आप एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर हैं, तो अब अपनी स्किल्स को प्रूव करने का वक्त आ गया है। हासिल कीजिए एक ऑफिशियल कहरामा सर्टिफिकेशन, पाइए अपना लाइसेंस जो आपके लिए कतर में नए जॉब अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल देगा, एक ऐसे सर्टिफिकेट के साथ जो आपकी ब्रिलियंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का कमिटमेंट शो करता है। इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए, अभी रजिस्टर कीजिए और बन जाइए अपने फील्ड के टॉप कॉन्ट्रैक्टर्स और टेक्नीशियंस में से एक। बस विजिट कीजिए कहरामा की वेबसाइट www.km.qa और खुद को रजिस्टर कीजिए। सर्टिफाइड बनिए, सर्टिफाइड के साथ बनिए।
1: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
2: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
1: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
2: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
1: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
3: Zabardast evening, make you drive golden with.
4: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

0: हाँ जी, अली जफर की आवाज। सीरियसली बंदे का दिमाग ही खत्म हो चुका है कि भाई डोंट नो, अब मेरे को नहीं पता कि क्या बनाना है। सो या इन एक चीज, आई डोंट नो, जब भी कोई मूवी प्रमोशन की बात आती है ना, मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था, यू रिमेंबर राजकुमार राव की कोई फिल्म आई थी, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं कि जब भी आते हैं ये सेलिब्रिटीज बाहर आके खाने क्यों लग जाते हैं यार, मतलब जनता के बीच में आते हैं, स्ट्रीट फूड जो है वो ट्राई करते हैं, दे समटाइम्स दे डोंट इवन टच। ओके, सो कॉकटेल 2 की प्रमोशन चल रही है, आपको देखा होगा कि ये अपना जो इनके स्टार्स वो खा रहे हैं, मतलब स्ट्रीट फूड खा रहे हैं, जिसमें से मैं एक वीडियो देख रही थी शाहिद कपूर का, शाहिद कपूर वड़ा पाव जो है वो खा रहे हैं, एंड उन्होंने सिर्फ एक्टिंग की है वड़ा पाव खाने की, वो वड़ा पाव खा नहीं रहे हैं। तो मतलब क्यों चलता है कोई उनको प्रमोशन, जो उनके प्रमोशन जो भी करने वाले हैं वो कुछ और प्लान बताए यार, ये प्लान बड़ा पुराना होता जा रहा है खाना खाने वाला।
1: तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए।
0: सुंदरी रेडियो ऑलिव गर्ल के दिल की जी ओ बिंदास।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरेडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू।
0: दोहा बैंक और लुलु लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
2: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
2: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफ स्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM. Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM. And Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। गदर की नंबर वन आरजे सिमरन के
5: साथ। Zabardast evening, make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

ज्यादा देर तक अब आपको दूर जो है वो नहीं रहना है। देखिए, अगर आपका मतलब जो रेजिडेंसी परमिट है वो कैंसिल हो गया है, सो उसमें क्या है कि आपको अब क्या करना है। एक्सपैट्रिएट्स के लिए मैं बोल रही हूँ, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने ये अभी अनाउंस किया है कि अगर आपका रेजिडेंसी परमिट कैंसिल हो गया है तो आप पहले ये डेट जो थी कि आप 30 दिन रुक सकते थे, लेकिन अब इसको रिड्यूस करके 14 दिन कर दिया गया है। लेकिन अगर आप ये 14 दिन से ज़्यादा रुक रहे हो तो पर डे आपको 10 रियाल का फाइन पड़ेगा। सो वो फाइन वाली भी यानी है कि ऐसा ना सोचिए कि कोई बात नहीं 10 रियाल पर डे ही फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई भी काम जो है वो आप ऐसा मत करिए जिससे आपको जो है वो दिक्कत हो। सो मेक श्योर कि जब आपका रेजिडेंसी परमिट कैंसिल हो चुका है तो पहले ये 30 दिन था, अब ये 14 दिन हो चुका है। सो 14 दिन के अंदर अंदर आपको जो है वो बाहर जाना पड़ेगा, कंट्री से निकलना पड़ेगा। ठीक है, सिमरन गौरी आपके साथ, सी यू बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: शैकमैन की पावर पैक्ड रेंज, हेवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ. विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ.

गाना तो था कि तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, लेकिन आप मेरे लिए बगा दो सिमरन कौर, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। क्या मेरी बातों में ऐसा उलझा जिया? नचले मेरे नाल वे। पौ पौ पौ पौ पौ हो गया गाने में।

0: कुछ लोग जो ना अलग अलग लेवल के कांड करते हैं
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
0: ये बात है। So, जब इंसान को जॉब चाहिए रही होती है समझा करो यार मेरे वर्ड जो है कभी कभी अटक जाते हैं। So, हम सब इंटरव्यू देते हैं जॉब के लिए है ना। So, हम इंतजार करते हैं कि वो जो मेल है वो आ जाए हमारे पास कि हाँ भाई हम जो है वो सिलेक्ट हो चुके हैं। लेकिन रिजेक्शन किसी को भी नहीं चाहिए होती है, लेकिन रिजेक्शन को लेने का एक तरीका होता है, राइट? तो एक बंदे की मेल जो है ना बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, तो उसको मेल पे रिजेक्शन आ गई, लेकिन वो बंदा जिस पे रिजेक्शन आई है उस पे रिप्लाई कर रहा है कि भाई देखो आज तक मुझे बहुत सारे लोगों ने जो है वो रिजेक्ट किया है और आपने भी मुझे अब रिजेक्ट कर दिया और मैं इस रिजेक्शन को जो है वो नहीं ले रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने मुझे रिजेक्ट किया, लेकिन अभी क्या है कि आपको मुझे जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, सो आगे उसने रिप्लाई कर दिया, आई लुक फॉरवर्ड टू जॉइनिंग यू एज सून एज पॉसिबल, इस तरह का कुछ तो मेल उसने लिखा। सो मतलब ये अलग लेवल का बंदा है कि भाई जब तेरे को सामने वाले ने रिजेक्ट कर दिया है आप उनके रिजेक्शन को ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो और बोल रहे हो कि भाई मैं बहुत जल्दी आपकी टीम को जो है वो ज्वाइन करूंगा। हिम्मत हो तो ऐसी मुझे लगता है ना एक लेवल जब ऐसा होता है कि आपके अंदर दर्द होता है फिर आपको कोई दर्द जो है वो डरा नहीं सकता है और आपका दर्द खत्म हो जाता है, डर भी खत्म हो जाता है। तो इनका लेवल मुझे लग रहा है वही चल रहा है, इतनी रिजेक्शन के बाद अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इनको।

0: भाई साहब ये सुन के आपको पानी पीना तो याद आ ही गया होगा।
1: रेडियो ऑलिव वाटर रिमाइंडर,
2: पी लिया पानी।
3: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
4: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
3: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
4: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर, मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
3: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टरकार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। टीएनसी अप्लाई।
5: हाय, दिस इज अमिताभ बच्चन एंड यू आर लिसनिंग टू
6: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे,
7: आरजे सिमरन के साथ।
8: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ
9: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
10: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: वेदर को तो बिल्कुल भी सीने से लगाने का मन जो है वो नहीं हो रहा है, लेकिन क्या है चेक करते हैं। मौसम अभी तक का टेम्परेचर है फील्स लाइक 35 डिग्री सेल्सियस एंड जो हाईएस्ट टेम्परेचर है आज का 41 डिग्री सेल्सियस एंड ब्रीजी डे है आज एंड ह्यूमिडिटी 26% है, विंड जो है 22 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चल रही है। सो थैंक यू सो मच, किसी ने मुझे शायरी लिख के भेजी है लेकिन उसमें मुझे थोड़ा सा दिक्कत है, मुझे थोड़ी सी समझ नहीं लगी है, तो आप मुझे दोबारा से करेक्ट कर लीजिएगा कि इसका मतलब क्या है। कहते कि हुस्न इतना भी वफादार हो कि कोई लड़की, हुस्न इतना भी ना वफादार हो कि कोई लड़की, मान ये मान क्या है, मान बने और उसे बच्चों की नजर लग जाए। सो समझ नहीं लगा यार, दोबारा से लिख के बता देना कि क्या मतलब है। सुंदरी रेडियो ऑलिव कोर के जरिए जो बिंदास
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: योर डेली सरप्राइज इज हियर, अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरेडू ऐप पर, एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू। Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danatal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhor.
3: दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
4: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
3: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
4: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर, मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
3: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलू मास्टरकार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। टीएनसी अप्लाई।
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर 1 आरजे सिमरन के साथ।
6: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

0: Radio Olive 106.3 FM Gio Bindas. दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टरकार्ड प्लैटिनम शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। टीएनसी अप्लाई।
2: शैकमैन की पावर पैक्ड रेंज, हेवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
6: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
7: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
1: हाय, दिस इज विपाशा बासु।
2: हाय, मैं राजकुमार राव।
3: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
4: हाय, दिस इज दिशा पार्डी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो 106.3 FM।

0: ट्रैक यार, अमेजिंग. जब भी हम कहीं पे ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपकी बकेट लिस्ट में बहुत सारे नाम होते हैं, तो जापान उनमें से एक नाम है जहां पे मुझे ट्रैवल करने का बहुत मन है. तो आज मैं ना उसके बारे में पढ़ रही थी, जापान के बारे में. सो अपना क्या है कि अपन जहां पे भी होते हैं, है ना, हम अपने फोन पे लग जाते हैं, है ना, फोन पे जोर जोर से कई लोग बातें भी करने लग जाते हैं, जो कि मुझे बुरा लगता है कि आप जब पब्लिक में हो तो आप जोर जोर से फोन पे बातें नहीं कर सकते. सो अगर आप जापान में जाते हैं या बस में या ट्रेन में सफर कर रहे हैं, सो आपका फोन अगर साइलेंट पे नहीं है तो ये मतलब आप रूड हो, ये कंसीडर किया जाता है. और आपको अपने फोन को मैनर मोड पे रखना होगा, यानी कि साइलेंट मोड पे रखना होगा, और आप बात नहीं कर सकते हैं. अगर आप बात कर रहे हैं तो वो रूड हो जाएगा. सो लिफ्ट में भी जब आप होते हैं तभी यही जो है वो रूल को फॉलो किया जाता है. एंड एक और चीज मैं पढ़ रही थी जापान के बारे में कि भाई वहां पे टिप जो है ना, जब आप खाना पीने वगैरह के बाद टिप देते हो तो वहां पे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है, और आप टिप वहां पे नहीं देते हो. कुछ सिचुएशंस रहती है जहां पे आप दे सकते हो, उनका तरीका अलग होता है टिप देने का. बट या मेरे को नहीं पता था यार, देखो या तो आपको पढ़ने से पता लगता है और या फिर आपको ट्रैवल करने से पता लगता है कि हर कंट्री का एक अपना अपना रूल होता है और हर चीज आपको अमेज करती है. सुनते रहिए रेडियो ऑलिव को, कहते रहिए जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर Song of the Hour. Yeah, guys.

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
3: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
4: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
3: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन.
4: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
3: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन.
5: फुटबॉल बाउंड्रीज नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता. इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया. अपने ट्रेडिशनल कतरी थोब में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया. नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है. और यही है द हिवारी इनिशिएटिव जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है. कल्चर ट्रैवल्स, फुटबॉल कनेक्ट्स एंड हिवारी इज ब्रिंगिंग कतर टू द वर्ल्ड.

स्वागत है तो आप तो अभी स्वागत करते हैं यार मैं जी सोड़े हो कितना देखिए हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर है आपके साथ। तो आज ना वैसे आपको पता है कि कितना सारा कंटेंट जो है वो आजकल सोशल मीडिया पे आ रहा है और आपको नहीं समझ लगता कि यार क्या देखें और क्या ना देखें। आज मैंने सुदेव ने और तनीषा ने एक फिल्म का ट्रेलर देखा और वो फिल्म भाई साहब मेरे को लग रहा कि अलग ही लेवल की फिल्म जो है वो होने वाली है। उसके बारे में मैं आपको वापस लौट के थोड़ी देर में बताने वाली हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज भी बता दूं जो कि मैंने लाइफ में ना रियलाइज की है और वो आपको बतानी जरूरी है और किस में वो चीज मैं आपको बताने वाली हूं। सो रियलिटी चेक आज का ये है आप लोगों के लिए। किसी ने मुझे ना पूछ लिया कि तुमने अपनी लाइफ से ना क्या सीखा है, तुमको क्या लगता है कि लाइफ में जो है वो क्या करना चाहिए। सो मैंने उसको ये बोला कि यार प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, ईट प्रोटीन एंड फाइबर एंड माइंड योर ओन बिजनेस। मुझे ये लगता है कि लाइफ में जितनी जल्दी आप ये समझ जाएंगे कि आपको अपने आप को प्रायोरिटाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उस दिन आपको लाइफ में समझ लग जाएगा कि फिर प्रायोरिटाइज जब आप खुद को कर लेते हो तो अच्छा खाना प्रोटीन फाइबर का इंटेक पूरा करिए, उससे आपकी हेल्थ जो है अच्छी रहेगी और माइंड योर ओन बिजनेस, किसी के और बिजनेस में घुसने की जरूरत नहीं, अपने काम से काम रखिए। सो लाइफ जो है ना एकदम सेट रहती है। सो यार ये चीज करके देखिए, लाइफ बड़ी सॉर्टेड है यार।

0: भाई साहब ये सुन के आपको पानी पीना तो याद आ ही गया होगा।
1: रेडियो ऑलिव वाटर रिमाइंडर,
2: पी लिया पानी।
3: शैक मैन की पावर पैक्ड रेंज, हैवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ।
4: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
5: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
6: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
5: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
6: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
7: Hi, this is Air Rahman.
8: Air Rahman.
7: Radio. Listen to my songs on 106.3 Radio Olive.
8: Jio Bindas.
9: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.
10: I'm in number one Radio Olive.
11: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे,
12: आरजे सिमरन के साथ।
13: Zabardast evening, make you drive golden with.
14: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
15: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.
16: Just

0: और मेरे पास एक मैसेज आया है, इनका क्या नाम है, नूर, आबिद नूर जी कहते हैं कि पाकिस्तान से सिमरन जी आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेके आया हूँ, हैंडमेड बैग है। थैंक यू सो मच यार, आप लोगों का प्यार, ओए ओए ओए, सदके जावा यार। ओह ये तो राइम हो गया था, है ना। सो या मैं आपको बता रही थी ना कि एक फिल्म का ट्रेलर, हाँ मैंने, तनिषा ने और सुदेव ने देखा, फिल्म का नाम है द लास्ट हाउस। जी हाँ, इसका ट्रेलर अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। ये एक अमेरिकन साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म है और ये फिल्म 7 अगस्त को नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली है। सो इसमें क्या, इसमें जो मैंने ट्रेलर में देखा, एक फैमिली रहती है, सडनली वो अपने घर के अंदर ही सील हो जाती है, बंद हो जाती है, और कितने तरीके करते, इतनी कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपना घर जो है वो तोड़ नहीं पाते। और उसमें दिन, मतलब 2 महीने 3 महीने इसी तरह से निकलते जाते हैं, 1-2 दिन भी नहीं 2 महीने 3 महीने इस तरह से निकलते ही जाते हैं, और वो घर के अंदर ही सब कुछ जो है वो क्रिएट करने लग जाते हैं, पौधे वगैरह लगाने लग जाते हैं, क्योंकि किसी तरीके से उन्होंने सर्वाइव तो करना है। अब फिल्म में क्या होगा वो मुझे नहीं पता है, लेकिन इसका ट्रेलर आप देख लीजिए, मजा आ जाएगा देख के। सिमरन कौर याओ के साथ जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: आते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ।
1: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
2: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
1: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
2: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर, मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
1: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टरकार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। टीएनसी अप्लाई।
0: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
3: सिमरन के साथ।
4: Zabardast evening, make you drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: हाँ जी एक वर्ड जो है यूज किया जाता है वो है फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट में होता है कि एक ही टाइम पे आप बहुत सारा काम जो है वो कर रहे हैं, लाइक आपने कॉलेज क्लासेस के लिए भी रजिस्टर करवा लिया, आपने 5 वर्क ईमेल्स का भी रिप्लाई कर दिया, और सेम टाइम आप लंच के लिए भी साथ में प्रेप कर रहे हो, आपका बहुत सारा दिमाग जो है वो बहुत सारी चीजों में चल रहा है, लाइक आई एम fully in my flow state. Like एक ही टाइम पे इतना कुछ अपनी लाइफ में chaotic हो रखा है, इतना कुछ चल रहा है, एक ही टाइम पे आप इतना सारा काम जो है वो कर रहे हो, सो या इसको कहते हैं ये वाला वर्ड जो कि आप नेक्स्ट टाइम यूज कर सकते हो और कोई आपको करे तो एटलीस्ट आपको समझ लग जाए।
1: धीरे धीरे चलना क्यों ना तुम अटकना, सोलवा साल है, हाय क्या ताल है।
0: पर एक बार तो देख पलट गए, मुंडा भी कमाल है, मुंडा तो ठीक है, कुड़ी भी कमाल है इधर।

0: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहाँ हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। FIFA की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ऑल एयर
1: इन एसोसिएशन विद।
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
2: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर। दोहा बैंक और लुलु लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
3: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
3: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
7: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
8: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

हां जी सुनियो कितना दिखी हाल चल सत श्रीकाल सिमरन कौर थोड़े नाल बिना देर लगाए अब आप लोगों का नाम ले लेते हैं। वेल अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम मैं अभी कभी ले दूं तो अभी आपका नाम रेडियो पर ले देते हैं, आप लोग भी सुन लीजिए, आपके दोस्त लोग भी सुन लेंगे, सबने दोस्तों के नाम भी आप लिख देना। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम मैं अभी कभी रेडियो पर बोलूं तो आप मुझे अभी कभी अपना नाम लिख के व्हाट्सएप करिए। मेरा व्हाट्सएप का नंबर बता देती हूँ, 3311063। जी हाँ, 3311063। इस नंबर पर नाम लिखिए, नो हाय नो हेलो नो वॉइस नोट्स। चलो अब मैं नाम बोले स्टार्ट कर रही हूँ। शाबाज, नूर, अदील, डेजी, बिलाल, रुचिका, फातिमा, यूसुफ, गजेंद्र, फारा चांद, सादिक जी, पाली जी, रबानी शेख जी, ओके, अर्जुन जी, यूसुफ जी, हसन, ताहिर जी, थैंक यू सो मच, इस्लाम जी, फुरकान अली जी, सादिक जी, थैंक यू सो मच, खिजर जी, थैंक यू सो मच, डेन जी, थैंक यू सो मच, प्रकाश जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, खिजर हयात खान जी, क्रिस हेंजो जी, थैंक यू सो मच, रिशु जी, थैंक यू सो मच, शाहजाद अली जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, रहमान जी, थैंक यू सो मच, संशय जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, रिमल जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, मौर्या जी, थैंक यू सो मच, करीम जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, रिबू जी, थैंक यू सो मच, सूरज जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। क्विकली सिर्फ और सिर्फ नाम लिख के भेजो, अगला गाना शुरू होने वाला है 3311063 पर। शवाज जी मैं आपका नाम ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, रेहान जी, थैंक यू रेहान, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, और अभी थैंक यू मत लिखो। शाबाज गुल जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, शौर्य जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, सुनील जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, एंड दैट्स इट फॉर नाउ। अब जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिए अब आप थैंक यू लिख सकते हो, और आप अपना फेवरेट वाला इमोजी बनाना मत भूलिएगा, साथ में अच्छा लगेगा, मुझे भी पता लगेगा कि आप लोग कौन सा इमोजी ज़्यादा यूज़ करते हो।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम

0: कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए.
1: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026. दोहा बैंक लूलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम. शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग. TNC अप्लाई.
2: फ्रेश फिश ऑन द ग्रिल, स्लो कुक्ड मंडी, परफेक्टली स्पाइस्ड प्रॉन्स एंड दैट स्पेशल चटनी. नो नॉइस, नो ड्रामा, जस्ट सी फूड डन राइट. BBQ फिश, क्रैब्स, प्रॉन्स क्राफ्टेड विद पेशेंस, सर्व विद प्राइड. दानादल पहाड़, द अल्टीमेट कतरी एडवेंचर. सुख वाके अलखोर.
3: फुटबॉल बाउंड्रीज नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता. इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया. अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया. नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है. और यही है द हिवारी इनिशिएटिव जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है. कल्चर ट्रेवल्स, फुटबॉल कनेक्ट्स एंड हिवारी इज ब्रिंगिंग कतर टू द वर्ल्ड.
4: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स CB 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
5: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
6: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
5: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
6: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.

0: भाई साहब ये सुन के आपको पानी पीना तो याद आ ही गया होगा।
1: रेडियो ऑलिव वाटर रिमाइंडर,
2: पी लिया पानी।
3: टैंक चेक
4: ब्रॉट टू यू बाय
3: नैनीताल पहाड़, दी अल्टीमेट कतरी एडवेंचर, सुकवाकिफ अलखोर।
5: दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
6: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
5: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
6: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफ स्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर, मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
5: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलू मास्टरकार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। टीएनसी अप्लाई।
7: हाय, मैं हूं विवेकानंद ओबरॉय। यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव। जियो बिंदास।
8: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
9: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे,
10: आरजे सिमरन के साथ।
11: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव।

0: जी मैं जी सुनियो के दादी की याल दल सचिया गाल सिमरन गौर आपके साथ। चलो फिर बिना देर लगाए
1: रेडियो ऑलिव पर
2: बहुत बढ़िया
0: जिस तरह का ये नाम है एक चुटकी सॉन्ग, और सॉन्ग भी मैं आपको एक चुटकी भर ही सुना रही हूँ, और आपको मुझे बताना है ये गाना कौन सा है। ये तो मैंने आपसे पूछ लिया।
3: The song should be दो लफ्ज की है बातें कही है, if I'm not wrong। How's everything Simran?
0: थैंक यू सो मच जी, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, सब बढ़िया है।
4: हेलो सिमरन को, गुड इवनिंग, सुरेंद्र सिंह हियर। जो भी आपने गाना सुनाया वो है हर किसी को नहीं मिलता
0: यहाँ प्यार जिंदगी में चाहिए भी नहीं यार। बधाइयां बिचाइयां दे बहुत सारे पटाखे यार, बड़ा मजा आ जाता है और जिगर ठंडा हो जाता है आप लोगों।

0: दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलू मास्टरकार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ।
3: Zabardast evening, make you drive golden with.
4: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

क्यूट गाना यार। आपके साथ जाने से पहले शो की आखिरी दो गाने

0: शाम को 6 बजे, कल वेंसडे हो जाएगा. वेंसडे जब आते हैं ना तो वीकेंड के करीब हो जाते हैं यार, क्योंकि थर्सडे तो वीकेंड जैसे ही फील होता है. सो या आपको थोड़ी सी मोटिवेशन दे रही थी. 2 घंटे जो है वो मिडनाइट लाउंज को एंजॉय करिए. आई होप मेरा ये कोल्ड ठीक रहे, मेरे को नहीं बीमार होना यार. बीमार होगी तो घर पे भी बैठने का मजा नहीं आता, फन नहीं ना कर सकते आप. सो खाने में रो ऐश करते रहो, चेहरे पे बनने वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना. बी नाइस टू एवरीवन यार. गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सकिलो.
1: रेडियो ऑलिव पर Song of the Hour. Yeah.

You are listening Radio Olive 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम Yes, of course, Midnight Lounge. So आज की शो की शुरुआत बहुत सिंपल सवाल से करते हैं. इस हफ्ते आपने नया क्या सीखा? नहीं नहीं, ऑफिस ट्रेनिंग या स्कूल वाला नहीं, कोई इंटरेस्टिंग चीज, कोई रैंडम फैक्ट, कोई ऐसी बात जो सुनते ही आपने कहा हो कि अरे यार मुझे ये पहले क्यों नहीं पता था. फॉर एग्जाम्पल, क्या आप जानते हैं कि ऑक्टोपस के 3 दिल होते हैं, हार्ट्स मतलब 3 दिल होते हैं, और जब वो स्विम करता है तो उसका एक हार्ट टेम्प्रेरी स्टॉप हो जाता है. या फिर एक आइफिल टावर जो है, मतलब ऑफकोर्स आइफिल टावर तो एक ही है, सो गर्मी में लगभग 6 इंच तक लंबा हो जाता है. सो हीट की वजह से मेटल एक्सपेंड होता है. और मेरी फेवरेट चीज़ तो पता है आपको क्या है, बनाना जो है वो टेक्निकली बेरी है लेकिन स्ट्रॉबेरी नहीं है. मतलब साइंस कभी कभी बहुत कंफ्यूजिंग होती है और मुझे लगता है कि क्यूरियोसिटी एक अंडररेटेड यू नो सुपर पावर है. सो स्कूल ख़त्म हो जाता है, कॉलेज ख़त्म हो जाता है, लेकिन लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग क्यूरियस रहते हैं वो कभी भी बोरिंग नहीं होते. हर हफ्ते कुछ नया सीखना, दिमाग में यंग चीज़ों को लेकर आना और लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाना. तो आज रात का सवाल क्या है, इस हफ्ते अपने हिसाब से सबसे इंटरेस्टिंग आपने क्या सीखा? मैसेज भेजो मुझे 3311063 पर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, यह है मिडनाइट लाउंज. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु MasterCard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply. You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo

सो आजकल ना सब लोग जो है वो हेल्थ की बात करते हैं, शुगर कम खाओ, वॉकिंग करो, वाटर ज्यादा पियो, लेकिन एक प्रॉब्लम है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, कॉन्स्टेंट इंटरप्शन, एक मैसेज, नोटिफिकेशन, ईमेल, रील या फिर कॉल, और हमारा दिमाग हर दो मिनट में टॉपिक चेंज करता है। इवन रिसर्च कहती है कि जब हम किसी काम के बीच में इंटरप्ट होते हैं तो वापस फोकस आने में टाइम लग जाता है, और दिन भर में दर्जनों बार ऐसा होता है कि हम कुछ कर रहे हैं और बीच में फिर किसी चीज़ के लिए हमें डिस्टर्ब होना पड़ा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम थकते कम से कम है, अटेंशन स्विच ज़्यादा होता है, इसीलिए कभी भी पूरा दिन बिजी रहता है लेकिन काम ज़्यादा नहीं होता, और रात को लगता है यार आज क्या ही किया। शायद प्रॉब्लम प्रोडक्टिविटी नहीं है, प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन है। तो आज का सवाल भी आपसे यही है कि बिना फ़ोन देखे आप कितनी देर तक रह पाते हो? और सिर्फ इतना ही नहीं, मतलब मैंने अपने ऑफिस में कुछ लोगों को ऐसा देखा है, इफ़ दे आर वर्किंग और आप उन्हें बुलाओगे या डिस्टर्ब करोगे तो दे विल क्लियरली से कि यार 10 मिनट रुक जा। सो क्या आप ऐसे लोगों में से हैं या फिर आपको तुरंत ऐसा लगता है कि यार किसी ने आवाज़ दी है तो फटाफट से जाना पड़ेगा? 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

So, जब किताबों की बात होती है तो आज एक और किताब लेकर आ गई हूँ। किताब का नाम है द कम्फर्ट बुक। अब ये जो किताब है ये सेल्फ हेल्प नहीं है, ये लाइफ को फिक्स करने की किताब भी नहीं है, बस याद दिलाती है कि कभी कभी ना ठीक ना होना भी ठीक ही होता है। बुक में छोटे छोटे थॉट्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं और एक लाइन जो मुझे बहुत पसंद है, योर एग्जिस्टेंस मैटर्स। बस सिंपल सी बात है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM। मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज। यू नो आज की दुनिया में हम बार बार कंपेयर करते हैं सैलरीज, फॉलोअर्स, सक्सेस और लाइफस्टाइल, और फिर इसी चक्कर में हम भूल जाते हैं कि हम ऑलरेडी इनफ है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ह्यूमन ब्रेन नेचुरली नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा नोटिस करता है। इसे नेगेटिव बाइस कहते हैं बेसिकली, यानी कि 10 अच्छी चीज़ों के बीच में एक प्रॉब्लम, तो दिमाग सीधे प्रॉब्लम पर फोकस करता है। इसीलिए कम्फर्ट की ज़रूरत होती है, और कम्फर्ट का मतलब वीकनेस नहीं होता, कम्फर्ट का मतलब होता है रिचार्ज होना। तो आज मेरा जो आपसे सवाल है वो यही है कि क्या आपने ऐसी कोई किताब पढ़ी है जिसने आपको बहुत कम्फर्ट दिया हो? किताब का नाम ही है द कम्फर्ट बुक। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे और भी किताबों की, तो आप मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बहुत कंफर्ट देती हैं। 3311063। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

आज एक फन डिबेट करते हैं, हमारे हिस्ट्री के सबसे कूल इन्वेंशंस क्या थे। और प्लीज मोबाइल फोन बोलने से पहले थोड़ा सा सोचेगा, क्योंकि कंपटीशन स्ट्रांग है ना। इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, एयरप्लेन, फोटोग्राफी, मैप्स, व्हील, पता नहीं क्या क्या नया आया है जिसकी वजह से हमने बहुत कुछ नया एक्सप्लोर किया है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम ऑफकोर्स मिडनाइट लाउंज। सो अगर मैं एसी की बात करूँ तो उसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलना चाहिए भाई। इमेजिन कीजिए एसी के बिना गल्फ लाइफ, बस इमेजिन ही करना है, मतलब उसके अलावा आप कुछ कर भी नहीं सकते। अगर आपने इमेजिन करने के अलावा सोचा भी तो आपको लगेगा कि कैसे पॉसिबल है। सो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एयर कंडीशनिंग ने सिर्फ कंफर्ट नहीं दिया, उसने पूरे सिटीज़ को ट्रांसफॉर्म कर दिया। कई सारी मॉडर्न सिटीज़ का डेवलपमेंट एसी के बिना पॉसिबल ही नहीं होता। लेकिन मुझे मैप्स भी अमेजिंग लगते हैं यार। आप एक छोटा सा फ़ोन निकालते हो और दुनिया के किसी भी कोने का रास्ता देख सकते हो। और मैंने ये मैप्स के थ्रू ही ना जाने कितनी सारी सिटीज़ घूमी हैं। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले लोग स्टार्स देखकर डायरेक्शन ढूंढते थे, आज GPS है। ह्यूमन बिगिंस स्ट्रेंज, मतलब क्या तो चीज़ें हैं यार, और ब्रिलियंट भी हैं। तो आज रात का सवाल है कि आपके हिसाब से ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे कूल इन्वेंशन क्या है और क्यों है। 3311063 is my number. You are listening Radio Olive. Stay tuned. Geo Bindas.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: ये है मिडनाइट लाउंज.

सो वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज. सो आज एक चैलेंज करते हैं. इमेजिन कीजिए आपके दोस्त कल पहली बार कतर में शिफ्ट हो रहे हैं और आपको उन्हें कतर के बारे में सिर्फ एक सेंटेंस बोलने की परमिशन है, बस एक. अब सोचिए आप क्या बोलोगे. कभी वेदर ऐप पर भरोसा मत करना, या फिर बोलोगे कि एसी और सनशाइन दोनों एक्सट्रीम लेवल पर मिलेंगे, या फिर बोलोगे कि यहाँ फ्राइडे को जो मूड है वो थर्सडे से स्टार्ट हो जाता है, या फिर आप बोलोगे कि कतर जो है वो मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल और अमेजिंग सी कोजी सी कंट्री है, लेकिन दुनिया भर के लोग यहाँ पर आपको मिल जाएंगे. इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कतर में 100 से ज़्यादा नेशनैलिटीज साथ रहती हैं और मुझे लगता है कि इसी वजह से यहाँ हर इंसान की कतर स्टोरी अलग है. किसी के लिए अपॉर्चुनिटी, किसी के लिए सेकेंड होम, किसी के लिए टेम्प्रेरी स्टॉप और किसी के लिए लाइफ चेंजिंग चैप्टर. तो आज रात का एक सवाल है आपसे कि अगर कोई कल यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, मूव हो रहा है, तो एक लाइन में आप उसे क्या बताओगे कतर के बारे में. 3311106 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: सुना, ये है मिडनाइट लाउंज
1: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

So, आज गानों की बात करते हैं, लेकिन फेवरेट सॉन्ग की नहीं, उस गाने की जिन्होंने गेम ही चेंज करके रख दिया. फॉर एग्जाम्पल, यू नो, कई सारे ऐसे गाने हैं जैसे गाना सिर्फ हिट नहीं होता, उसने इंटरनेट कल्चर ही बदल दिया होता है. ठीक है, जैसे गंगम स्टाइल गाना आया था, राइट, मतलब यूट्यूब हिस्ट्री चेंज कर दी. फिर आया कोलावेरी दी और लोगों ने रियलाइज किया कि लैंग्वेज बैरियर उतना बड़ा है नहीं जितना हम सोचते हैं. और फिर कुछ गाने ऐसे होते हैं जो फैशन चेंज कर देते हैं, डांस के स्टेप चेंज करके रख देते हैं, वेडिंग की प्लेलिस्ट चेंज कर देते हैं. और एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, म्यूजिक हिस्टोरियंस कहते हैं कि कुछ गाने ना सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होते, वो कल्चर इवेंट्स बन जाते हैं. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज. और फिर जो इस तरह के गाने आते हैं ना, लोग उन्हें सुनते नहीं, उन्हें याद रखते हैं. तो आज रात का जो सवाल है वो यही है कि आपके हिसाब से कौन सा गाना सिर्फ हिट नहीं था, उसने पूरी जनरेशन को इन्फ्लुएंस किया था. भाई, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

So, आज किताबों की बात हो ही रही है तो एक बहुत ही अनयूजुअल किताब द बुक ऑफ डिलाइट्स और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि इस किताब का कॉन्सेप्ट ही बहुत ब्रिलियंट है. यू नो ऑथर ने एक सवाल तक रोज एक छोटी सी डिलाइट नोटिस की. बस ना कोई अचीवमेंट, ना कोई अवार्ड, ना कोई लाइफ चेंजिंग इवेंट, सिर्फ स्मॉल डिलाइट्स जैसे सुबह की चाय, किसी स्ट्रेंज की स्माइल, फ्रेशली वॉश्ड बेडशीट, अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लीमेंट्स या यू नो ट्रैफिक सिग्नल पर फेवरेट गाना भी बज जाना. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, What do you notice? Grows. अगर आप प्रॉब्लम नोटिस करोगे, प्रॉब्लम बढ़ती हुई लगेगी. अगर आप डिलाइट नोटिस करोगे, लाइफ थोड़ी लाइट लगने लग जाएगी. हम सब हैप्पीनेस को ना बड़ा प्रोजेक्ट बना देते हैं, लेकिन शायद हैप्पीनेस काफ़ी बार बहुत छोटी सी होती है. सो अगली बार जब आप कुछ नोटिस करो तो अच्छा ही नोटिस करना, बुरा नोटिस मत करना. और आज के दिन की सबसे छोटी और सबसे खूबसूरत डिलाइट क्या थी आपकी, बताइएगा ज़रूर. 3311060 इज़ माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: ये है मिडनाइट

सो लेट्स टॉक अबाउट आखिरी टॉपिक, क्योंकि ये मेरे जाने का टाइम हो गया है. एवरी टाइम जब मैं आपसे ये बोलती हूँ हर रात को, तो थोड़ा सा ना बुरा लगता है, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है. ऐसा लगता है कि और बातें करनी थी, बट आज नहीं जाऊँगी तो कल फिर लौट कर कैसे आऊँगी, बस इसी उम्मीद के साथ चली जाती हूँ. सो थोड़ा सा सीरियस कम और थोड़ा फन ज़्यादा. इमेजिन कीजिए, ओलंपिक्स में एक नई कैटेगरी ऐड हो गई है, एवरीडे लाइफ चैंपियनशिप. अब मेडल्स मिलेंगे ऑर्डिनरी स्किल्स के लिए, जैसे कि सबसे फास्ट बेडशीट फोल्ड करना, सबसे जल्दी चार्जर ढूंढना, सबसे क्रिएटिव एक्सक्यूज बनाना, या फिर व्हाट्सएप मैसेज टाइप करते वक्त डिलीट कर देने का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो बनाना. मुझे लगता है कि कतर में पार्किंग स्पॉट जो है वो स्पॉट करना भी एक चैंपियनशिप होना चाहिए भाई, गोल्ड मेडल लेवल का स्किल है ये. सो इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ. जापान में एक्चुअल कॉम्पिटिशन होते हैं, जहाँ लोग प्रॉपर एयरप्लेन फ्लाइंग, पिलो फाइटिंग और स्पीड पैकिंग में कम्पीट करते हैं यार. मतलब तो दुनिया ऑलरेडी काफ़ी क्रिएटिव है. सो अब आपकी बारी है. सो आई विल से कि अगर ऑर्डिनरी लाइफ को ओलंपिक्स में अगर हम लेके जाते हैं, तो आप किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीत सकते हो. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान और नंबर है 3311063. स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर, आई विल बी देयर ऑन व्हाट्सएप. अभी के लिए जा रही हूँ, कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह पर. गुड नाइट.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: ये है मिडनाइट

करते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। गदर की नंबर वन आरजे।

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिन

तुरंत आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।
0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

You are listening to Radio Olive 106.3 FM. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

Olive 106.3 FM Gio Bendaz. 106.3 FM.

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास 106.3 FM।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास

are listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है, जबरदस्त

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: BFM, Gio Bendaz.
1: Gio Bendaz.
2: Chand

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।